रेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारह हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: आगच्छन्तु संस्कृतं शृण्मः संस्कृतं वदामः। अद्य सहायार्थं मया सह मम पतिः विठ्ठल महोदयः अस्ति। अद्य संस्कृतभाषायाः विषये किञ्चित् वदामः। किमर्थं संस्कृतभाषायाः विषये किमर्थं वदामः? तर्हि भाषाज्ञानार्थं सम्भाषणार्थं च। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती, तत्रापि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। एतत् अस्ति एकं सुभाषितम्। कविः वदति सर्वासु भाषासु संस्कृतभाषा मुख्या मधुरा दिव्या च अस्ति। संस्कृतभाषायां काव्यं मधुरं, काव्ये अपि सुभाषितम् अधिकं मधुरम् इति। क्या कहा? हाँ, सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्रमुख है, मधुर है और दिव्य है। इस भाषा में काव्य बहुत मधुर है और काव्य में भी सुभाषित और मधुर है। संस्कृत भाषा गीर्वाण वाणी देव भाषा इति प्रसिद्धा। ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग वाणी सरस्वती इति अमरकोशे।
1: किम नाम भाषा?
0: भाष्यते इति भाषा, जो बोली जाती है वह भाषा है। गीर्वाण वाणी यानि संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा भारत देशस्य प्राचीना व्यवहार भाषा, साहित्य की भाषा अपि। ऋषि मुनीनां विदुषां च गभीरं चिंतनं तत्र अस्ति संस्कृत भाषायां।
1: किं नाम संस्कृतम्?
0: परिष्कृतं परिशुद्धं व्याकरणादि दोषरहितं यत् तत् संस्कृतम्। संस्कृत का अर्थ होता है संस्कारित परिष्कृत शुद्ध व्याकरण के दोषों से रहित। ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति धर्म दर्शन व्याकरण ज्योतिष गणित आयुर्वेद इत्येषां महान निधि ही अस्ति संस्कृत वाङ्मयम्। तत्रापि काव्यम मधुरम्।
1: किं नाम काव्यम्?
0: कवेः कर्म काव्यम्। गद्यमयं पद्यमयं सम्मिश्रं सर्वं काव्यम् एव।
1: तर्हि कविः कः?
0: कविः प्रतिभावान ज्ञानी क्रांतदर्शी च। जो प्रतिभावान है, ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है, उसे कवि कहते हैं। वेद मंत्राः वेद सूक्ताः उपनिषद मंत्राः श्लोकाः स्तोत्राणि इतिहास काव्यम यथा रामायणं महाभारतं महाकाव्यानि यथा रघुवंशम कुमारसंभवम किरातार्जुनीयम शिशुपालवधम नैषधीयचरितम् एतानि पंच महाकाव्यानि। अष्टादश पुराणानि नाटकानि कविताः कथाः पशुपक्षीकथाः नीतिकथाः सुभाषितानि सर्वं काव्यम् एव। कवि कहते हैं संस्कृत भाषा में काव्य बहुत मधुर है, मगर काव्य में सुभाषित और भी मधुर है।
1: किम नाम सुभाषितम्?
0: सुभाषितम् नाम शोभनम् भाषितम् अथवा शोभना उक्ति ही। सुभाषित याने सुंदर वचन, सुंदर बोली या सुवचन। संस्कृत भाषा साहित्ये सर्वत्र बहूनि सुभाषितानि वर्तन्ते। अल्पैः शब्दैः महान्तम् अर्थं निरूपयन्ति कवयः सुभाषितेषु। संस्कृत भाषा साहित्य सुभाषितों से भरा हुआ है। कवि लोग सुभाषितों के द्वारा कम शब्दों में महान अर्थ प्रकट करते हैं। आज हमने एक प्रसिद्ध सुभाषित सीखा, जिसमें कवि ने अल्प शब्दों में संस्कृत भाषा का, संस्कृत काव्य का और सुभाषित का भी वर्णन किया है। आइए वह सुभाषित गाते हैं। सुभाषितम् शृण्वन्तु अनुगायन्तु।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: महानता का महत्व. आसमां में असंख्य सितारे टिमटिमाते हैं, लेकिन कुछ ही गिने चुने तारे ही अपनी चमक धमक और रोशनी रंगत से प्यारे और लुभावने लगते हैं. ऐसे ही संसार में अनेक लोग जन्म लेते हैं, किंतु कुछ ही महानता के बलबूते संसार क्षितिज पर ध्रुव तारावन चमकते रहते हैं. महानता रूपी गुण सौरभ भी है ही ऐसा जो इंसान को अमर बना देता है. मानव मूल्यों में सिरमौर गुण है महानता, जो साधारण मनुष्य को आसमां की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है. महानता अर्थात ऊंचे लक्ष्य पाने के लिए श्रेष्ठ विचार कर दिव्य गुणों से युक्त कर्म करना. त्याग, बलिदान और समर्पणता से भरपूर हो लोक कल्याण हेतु किसी विशेष कार्य का बीड़ा उठाना. मानव के भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना. स्वयं के हानि लाभ को न देखते हुए दूसरों के हित के लिए कार्य करना. सद्गुणों के आचरण से आदर्श उदाहरण बनना इत्यादि सभी महानता के लक्षण है. इतिहास इसका साक्षी है कि अनेक विभूतियों ने महानता के बल से ही बदलते समय की धारा को बदला है. बिगड़ते संसार की तस्वीर को महानता के तेज से संवारा है. जब जब धरा पर विपत्तियों के बादल मंडराए तो कोई न कोई महात्मा सितारा बन उदय हुआ और अपने महान कार्यों से समस्याओं के सागर से संसार को पार लगाया. जब जब धरती पर अज्ञान का अंधेरा छाया तो बुद्ध जैसे महात्मा ने महानता के प्रकाश से उजियारा फैलाया. और जब भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों ने जकड़ा तो बापू गांधी जैसे महात्मा ने महानता भरे अहिंसक आंदोलन से मातृभूमि को आजादी दिलाई. महानता में अज्ञान और अहम को लड़ने की ताकत होती है. महानता का जन्म सादगी व त्याग की कर्मठ माटी में होता है. त्याग के तप व ज्ञान के पवित्र जल से इसका सिंचन होता है और तब महानता रूपी वृक्ष बड़ा होने पर उस पर उज्जवल चरित्र रूपी फल लगते हैं. महान कर्म से ही साधारण इंसान भी महात्मा बन जाता है. अतः श्रेष्ठ कर्म की कलम से महानता का इतिहास लिखिए और महात्मा बन जगत को प्रकाशित कीजिए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: वेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: इन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांव के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी गई श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीव जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
4: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
5: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st सेंचुरी इंजीनियरिंग वंडर। फॉर मेनी डेकेड्स there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
4: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था, जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरै डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। IIT मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्यभूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
6: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
7: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना, जिसके द्वारा जो CBG प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है MSMEs के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोत की भारतीय टीम में विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
8: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकपिट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मित मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम। जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा अब सरकार माई बाप नहीं, नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोक सत्य की सुर्खी है महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति। गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक से दिया है तेजस संग उड़ान, फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयर क्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव, रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हराकर भारत की नजरें गोल्ड पर, क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मित के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: FM वेणुधुनी के एल ई कंसू पे आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM के एल ई कंसू।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसो। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती, सत्य अहिंसा शांति और मानवता का संदेश देने वाले बापू जी को आज हम श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं। गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए भी बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आइए आज के इस विशेष अवसर पर सुनते हैं गांधी जी के जीवन, उनके विचारों और उनके आदर्शों से जुड़ी हुई कुछ प्रेरणादायी बातें। और ये हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे भूपेंद्र शेरवी, फाइनल ईयर BAMS के स्टूडेंट है, केली BM के आयुर्वेदा महाविद्यालय के स्टूडेंट है। तो चले सुनते हैं भूपेंद्र शेरवी को।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं भूपेंद्र शेरवी, आयुर्वेद औषध एवं शल्य स्नातक, अंतिम वर्ष का छात्र, केली श्री BM कंकनवाड़ी आयुर्वेदा महाविद्यालय बेलगावी से। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और आज का ये अवसर हमारे लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि 2 अक्टूबर का दिन हमें उस व्यक्तित्व की याद दिलाता है जिसका नाम भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के नैतिक और सामाजिक इतिहास में भी एक अलग स्थान रखता है। जब हम गांधी जी का नाम पुकारते हैं तो हमारे सामने तुरंत एक तस्वीर उभरती है, गोल चश्मा, सफ़ेद धोती, हाथ में लाठी, चेहरे पर शांति और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बिना किसी बड़े पद के, बिना किसी राज सत्ता के, बिना किसी हथियार के लाखों लोगों को एक दिशा में खड़ा कर दिया। लेकिन आज की इस रेडियो बातचीत में मैं गांधी जी को केवल एक तस्वीर के रूप में याद नहीं करना चाहता, मैं गांधी जी को केवल स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता के रूप में नहीं देखना चाहता। आज हम कोशिश करेंगे गांधी जी को एक ऐसे इंसान के रूप में समझने की जिसने अपने जीवन में गलतियां की, उनसे सीखा, अपने विचारों का प्रयोग किया और अपने भीतर जाकर धीरे धीरे अपने जीवन को ऐसे विचारों के साथ जोड़ दिया जिनका प्रभाव उनके समय से निकलकर आज तक दिखाई देता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। उस समय किसी को यह पता नहीं था कि यह बच्चा आगे चलकर महात्मा गांधी कहलाएगा और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वे भी हमारी तरह एक सामान्य बालक थे, उन्हें भी झिझक थी, कमजोरियां थी और जीवन को समझने की अपनी यात्रा थी। यही बात गांधी जी को समझने के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि वे जन्म से ही पूर्ण थे, उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने स्वयं को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने जीवन को एक तैयार उत्तर की तरह नहीं देखा बल्कि एक प्रयोग की तरह देखा। शायद इसी कारण उनकी आत्मकथा का नाम उन्होंने रखा सत्य के प्रयोग। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरा जीवन पूर्ण सत्य की कहानी है, उन्होंने कहा कि यह सत्य की खोज है और उसके साथ किए गए प्रयोगों की कहानी है। यह बात आज के समय में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर अपने जीवन में पूर्णता खोजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई गलती ना हो, हमारा करियर बिल्कुल सही हो, हमारी पढ़ाई बिल्कुल सही चले, हमारे रिश्ते में कोई समस्या ना आए, हमारे फैसले हमेशा सही हो और हम हर जगह सफल हो जाएं। लेकिन गांधी जी का जीवन हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। वह हमें बताते हैं कि इंसान का जीवन गलतियों से मुक्त होने की कहानी नहीं है बल्कि गलतियों को पहचान कर उनसे सीखते हुए आगे बढ़ने की कहानी है। आज अगर कोई युवा अपने जीवन को लेकर कंफ्यूज्ड है, अगर उसे लगता है कि दूसरे लोग उससे आगे निकल गए हैं, अगर उसे लगता है कि उसने कुछ गलत फैसले लिए हैं, तो शायद गांधी जी की जिंदगी उसे यह भरोसा दे सकती है कि किसी भी इंसान की यात्रा एक सीधी रेखा में नहीं होती। रास्ते बदलते हैं, विचार बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं और इन्हीं बदलावों के बीच व्यक्ति अपने आप को खोजता है। गांधी जी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ दक्षिण अफ्रीका में आया। वे एक युवा वकील के रूप में वहां गए थे, उनके पास डिग्री थी, पेशा था और भविष्य को लेकर अपनी योजनाएं थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ हुए नक्सलीय भेदभाव ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ट्रेन की एक घटना विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जब प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें केवल उनकी त्वचा के रंग के कारण ट्रेन से बाहर कर दिया गया। कल्पना कीजिए उस रात की, एक युवा भारतीय, एक वकील, अपने सामान के साथ स्टेशन पर बैठा है और उसके सामने एक ऐसा प्रश्न है जो केवल उसके व्यक्तिगत अपमान का प्रश्न नहीं रह जाता। वह सोच सकता था कि यह मेरे साथ हुआ है, मैं भारत वापस चला जाऊंगा, अपना जीवन जीऊंगा और इस समस्या से दूर हो जाऊंगा। लेकिन उस अनुभव ने उनके भीतर एक दूसरा प्रश्न पैदा किया। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो उन हजारों भारतीयों के साथ क्या हो रहा होगा जिनके पास अपनी आवाज उठाने की क्षमता भी नहीं है। यहीं से एक व्यक्तिगत अपमान धीरे धीरे एक सामाजिक प्रश्न में बदल गया। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हम सबके साथ कभी न कभी अन्याय होता है, कोई हमें अपमानित करता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, कोई हमें कम समझता है, कोई हमारे अधिकारों को नज़रअंदाज करता है। लेकिन गांधी जी के जीवन का यह प्रसंग हमें पूछता है कि उस अनुभव के बाद हम क्या करते हैं। क्या हम केवल अपने दर्द में फंस जाते हैं या अपने अनुभव से एक व्यापक समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह के विचारों को विकसित किया और अन्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की एक नई पद्धति को आकार दिया। सत्याग्रह केवल विरोध करने का नाम नहीं था, उसमें सत्य के प्रति आग्रह था, लेकिन साथ ही यह विश्वास भी था कि अन्याय का विरोध करते हुए इंसान को अपनी मानवता नहीं खोनी चाहिए। आज जब हम सत्याग्रह शब्द सुनते हैं तो शायद हमारे सामने आंदोलनों की तस्वीर आती है, लेकिन अगर हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में समझे तो इसकी गहराई और भी स्पष्ट दिखाई देती है। मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बात लिखता है, आप गुस्से में जवाब देते हैं, वह और कठोर भाषा इस्तेमाल करता है, आप उससे भी ज्यादा कठोर शब्द लिखते हैं और देखते ही देखते एक छोटी सी बात दो लोगों के अहंकार की लड़ाई बन जाती है। अब सवाल यह है कि आपकी प्रतिक्रिया ने समस्या हल की या केवल आपके गुस्से को बाहर निकाला। गांधी जी के विचार हमें अपने व्यवहार पर यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या हमारा तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा उद्देश्य। अगर हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारी भाषा हिंसक है, अगर हम ईमानदारी की बात करते हैं लेकिन अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हैं, अगर हम सम्मान की मांग करते हैं लेकिन दूसरों का अपमान करते हैं, तो हमारे विचार और हमारे व्यवहार के बीच में एक दूरी पैदा हो जाती है। गांधी जी का जीवन इस दूरी को कम करने का प्रयास था। उन्होंने अपने विचारों को अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश की और यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व को केवल उनके भाषणों से नहीं बल्कि उनके जीवन से समझना जरूरी है। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा देश था जिसकी समस्याएं केवल किताबों में नहीं थी, भारत के गांव थे, किसान थे, मजदूर थे, गरीबी थी, सामाजिक भेदभाव था, अशिक्षा थी और औपनिवेशिक शासन की जटिल व्यवस्था थी। गांधी जी ने भारत को समझने के लिए लोगों के बीच जाने का रास्ता चुना। चंपारण, खेड़ा और अन्य आंदोलनों में उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझा और उनके साथ खड़े हुए। यहाँ गांधी जी के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष दिखाई देता है। नेतृत्व केवल बोलना नहीं है, नेतृत्व का पहला कदम सुनना है, किसी भी समस्याओं को वास्तव में समझना है। आज हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, लेकिन हम खुद कितनी बार दूसरे व्यक्ति को बिना बीच में रोके सुनते हैं। परिवार में, कॉलेज में, वर्क प्लेस में, समाज में और मित्रता में बहुत सारे विवाद इसलिए नहीं होते कि लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करता। गांधी जी की सार्वजनिक यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि परिवर्तन केवल बड़े भाषणों से नहीं आता, कई बार वह एक साधारण व्यक्ति की बात ध्यान से सुनने से शुरू होता है। फिर आता है 1930 का वह दौर जिसने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च। नमक एक ऐसी चीज़ जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद ही कभी विशेष महत्व देते हैं, लेकिन गांधी जी ने उसी नमक को औपनिवेशिक कानून के खिलाफ जन आंदोलन का प्रतीक बना दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ दांडी की ओर निकले और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक संदेश था कि परिवर्तन के लिए हमेशा बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी एक छोटी सी चीज़ भी पूरे समाज को जोड़ने का माध्यम बन सकती है। आज हम अपने जीवन में अक्सर सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरा एक निर्णय क्या बदल देगा, मेरी एक आवाज़ का क्या महत्व है। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि बड़े परिवर्तन कई बार छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। एक व्यक्ति गलत काम करने से मना करता है, एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करने से मना करता है, एक कर्मचारी गलत जानकारी देने से मना करता है, एक नागरिक सड़क पर कचरा नहीं फेंकता, एक युवा किसी अफवाह को बिना जांचे आगे नहीं बढ़ाता। ये सभी बहुत छोटे छोटे निर्णय लग सकते हैं, लेकिन समाज छोटे छोटे निर्णयों से ही बनता है। गांधी जी के जीवन की एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने केवल दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपने ऊपर भी प्रयोग किए। उनका जीवन आत्म अनुशासन, आत्म परीक्षण और आत्म संयम से जुड़ा रहा। आज की दुनिया में हम अक्सर बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त बदले, हमारा परिवार बदले, हमारे शिक्षक बदले, हमारी व्यवस्था बदले, हमारा समाज बदले, दूसरे लोग से ज़्यादा ईमानदार बने। लेकिन हम कितनी बार खुद से पूछते हैं कि मुझे क्या बदलना चाहिए। गांधी जी के विचार हमें इस प्रश्न की ओर ले जाते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सम्मान दें तो क्या मैं दूसरों का सम्मान करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे सच बोले तो क्या मैं खुद सच बोलता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि समाज में हिंसा कम हो तो क्या मेरी भाषा दूसरों के प्रति सम्मानपूर्ण है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा देश बेहतर बने तो क्या मैं अपने छोटे से दायरे में अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा हूँ। यह प्रश्न असहज हो सकते हैं साथियों, लेकिन शायद इसी असहजता से आत्मचिंतन शुरू होता है। आज के युवा के सामने एक अलग प्रकार की चुनौती है। गांधी जी के समय में कम्युनिकेशन के साधन सीमित थे, आज हमारे पास पूरी दुनिया हमारी जेब में है। एक स्मार्टफोन हमें कुछ सेकंड में लाखों लोगों से जोड़ सकता है, ज्ञान तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान है। शिक्षा, कोर्स, बुक्स, लेक्चर्स, रिसर्च, कम्युनिकेशन और कैरियर के अवसरों का विस्तार हुआ है, लेकिन इसी के साथ डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ा है। हमारा ध्यान लगातार बदलता रहता है, एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक शॉर्ट वीडियो, एक कमेंट, और हमारा ध्यान उस काम से हट जाता है जिसे हम करना चाहते थे। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन बहुत कम चीज़ों पर गहराई से काम करते हैं। गांधी जी का जीवन हमें एकाग्रता की शक्ति के बारे में सोचने का अवसर देता है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ मूल्यों को चुना और लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहे। आज के युवा के लिए शायद सबसे जरूरी बात यह है कि वह अपनी दिशा तय करे। हर ट्रेंड का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर नोटिफिकेशन का जवाब देना जरूरी नहीं है। आपको तय करना है कि आप अपने जीवन में किस दिशा में जाना चाहते हैं और फिर रोज थोड़ा थोड़ा उस दिशा में आगे बढ़ते जाना है। सत्य गांधी जी के जीवन का केंद्रीय विचार था, लेकिन सत्य केवल बोलने की चीज नहीं है, सत्य को जीना पड़ता है। सच बोलना तब आसान होता है जब सच बोलने से हमें कोई नुकसान न हो। असली परीक्षा तब होती है जब सच बोलने की कीमत चुकानी पड़े। एक विद्यार्थी के लिए सत्य का अर्थ हो सकता है यह स्वीकार करना कि उसे किसी विषय की जानकारी नहीं है। एक प्रोफेशनल के लिए सत्य का अर्थ हो सकता है अपनी गलती स्वीकार करना। एक व्यापारी के लिए इसका अर्थ हो सकता है ग्राहक को गलत जानकारी न देना। एक दोस्त के लिए इसका अर्थ हो सकता है सामने वाले से ईमानदारी से बात करना। और अपने लिए सत्य का अर्थ है अपनी कमजोरियों को पहचानना। कई बार सबसे कठिन सत्य वह होता है जो हमें अपने बारे में स्वीकार करना पड़ता है। हम दूसरों की गलतियां आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियों को स्वीकार करना कठिन होता है। गांधी जी का जीवन हमें आत्म परीक्षण की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। अहिंसा को भी आज के समय में नए तरीके से समझने की आवश्यकता है। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा न करना नहीं है, हमारा और हमारी भाषा भी चोट पहुंचा सकती है। एक कमेंट, एक मजाक, एक अफवाह, किसी की कमजोरी का सार्वजनिक मजाक, किसी समुदाय के बारे में अपमानजनक बात, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बिना प्रमाण नुकसान पहुंचाना, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनका अक्सर वास्तविक जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन आज के समय में अहिंसा का अर्थ यह भी हो सकता है कि हम असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रखें। हम किसी व्यक्ति के विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसे इंसान के रूप में सम्मान दे सकते हैं। लोकतंत्र और सभ्य समाज के लिए यह क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। असहमति दुश्मनी नहीं है, अलग विचार होना गलत होना नहीं है। किसी व्यक्ति को समझने के लिए जरूरी नहीं कि हम उससे सहमत ही हो। हमें केवल इतना सीखना है कि हम असहमति को नफरत में बदलने से रोकें। आज हमारे समाज में अलग अलग विचार, धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, जीवन शैली और राजनीतिक मत हैं। विविधता भारत की वास्तविकता है। समस्याएं अलग होने में नहीं है, समस्याएं तब शुरू होती है जब हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति हमसे अलग है वो हमारा दुश्मन है। गांधी जी के जीवन के अंतिम वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा के बीच शांति स्थापित करने के उनके प्रयास इस बात की याद दिलाते हैं कि शांति की सबसे अधिक जरूरत उसी समय होती है जब समाज में अशांति हो। जब सब शांत हो तब शांति की बात करना आसान है, लेकिन जब लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो तब संवाद और शांति के लिए बड़ा और खड़ा होना कठिन है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ऐसे ही कठिन समय का सामना किया और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए प्रयास किए। आज हमें एक और तरह की स्वच्छता की जरूरत है और वह है सूचना की स्वच्छता। गांधी जी के समय में समाचार पत्र और पत्रिकाएं विचारों को समाज तक पहुंचाने के प्रमुख माध्यम थे। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति की बात कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। यह एक बड़ी शक्ति है, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले हमें पूछना चाहिए, क्या यह सच है, इसका स्रोत क्या है, क्या इसे किसी विश्वसनीय स्थान से वेरीफाई किया गया है, क्या यह किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर सकता है, क्या मैं बिना जांचे इसे आगे बढ़ाकर किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूं। गांधी जी की सादगी की चर्चा भी अक्सर होती है, लेकिन सादगी का अर्थ विकास या सुविधाओं का विरोध करना नहीं है। सादगी का एक अर्थ यह है कि हम अपनी जरूरत और इच्छा के बीच के अंतर को समझें। आज हमारे सामने हर दिन नई चीज़ें आती है, नया फ़ोन, नया गैजेट, नया फैशन, नया ट्रेंड, नया लाइफस्टाइल। हमें हमेशा यह संदेश मिलता रहता है कि अगली चीज़ खरीदने के बाद हम और भी ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी चीज़ें हमारे नियंत्रण में है या हम चीज़ों के नियंत्रण में है। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को चला रही है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन क्या पैसा ही हमारी पहचान बन गया है। आराम जरूरी है, लेकिन क्या आराम ने हमारी मेहनत करने की क्षमता कम कर दी है। गांधी जी का जीवन हमें कम से कम उपकरणों में जीने की क्षमता के बारे में सोचने का अवसर देता है। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उनकी तरह जीवन जिए, जरूरी यह है कि हम अपने जीवन में यह पहचान सके कि हमें वास्तव में क्या चाहिए और क्या केवल हमारी इच्छा है। स्वास्थ्य के संदर्भ में भी गांधी जी के विचारों को समझा जा सकता है। आज हमारे पास आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, दवाएं, डायग्नोसिस और टेक्नोलॉजी है, इसके बावजूद लाइफस्टाइल रिलेटेड समस्याएं बढ़ रही है। नींद की कमी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनियमित भोजन, लगातार स्क्रीन टाइम, तनाव और मानसिक थकान जैसी समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी न होना नहीं है, स्वास्थ्य का अर्थ है अपने शरीर और मन की जिम्मेदारी लेना, कभी फोन को किनारे रखकर अपने परिवार के साथ बैठना कभी प्रकृति में समय बिताना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित शारीरिक गतिविधियां करना और समय समय पर अपने मन की स्थिति को समझना भी जीवन का हिस्सा होना चाहिए। सेवा गांधी जी के जीवन और विचारों का एक महत्वपूर्ण पक्ष थी, लेकिन सेवा हमेशा किसी बहुत बड़े काम का नाम नहीं है। किसी जरूरतमंद की मदद करना भी सेवा है, लेकिन किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना भी सेवा है, किसी बच्चे को पढ़ाना सेवा है, किसी परेशान मित्र के साथ बैठकर उसको समझाना भी सेवा है, किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना भी सेवा है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सम्मान से व्यवहार करना जिसे समाज अक्सर नज़रअंदाज करता है, वो भी सेवा है। सेवा का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें सामने वाले को एहसान महसूस न हो बल्कि सम्मान महसूस हो। समाज तभी मजबूत होता है जब लोग केवल यह नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि कभी कभी यह भी पूछें कि मैं क्या दे सकता हूँ। अब मैं विशेष रूप से युवाओं से कुछ कहना चाहता हूँ। साथियों, आज हमारे पास अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। हर दिन हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे आगे निकल रहे हैं। किसी का रिजल्ट आता है, किसी का करियर अच्छा है, किसी के पास पैसा है तो किसी के पास फॉलोवर्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया हमें किसी भी और किसी की भी पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाता। यह केवल चुने हुए क्षण दिखाता है। हम दूसरे व्यक्ति की उपलब्धि देखते हैं, उसकी रातों की मेहनत नहीं देखते। हम उसका रिजल्ट देखते हैं, उसके फेलियर को नहीं देखते। हम उसकी सक्सेस को देखते हैं, उसकी कंटिन्यूटी को नहीं देखते। इसलिए अगर आज कोई युवा अपने जीवन को लेकर परेशान है, अगर उसे लगता है कि वह पीछे रह गया है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि जीवन कोई रेस नहीं है दोस्तों, जिसमें हर व्यक्ति एक ही समय पर फिनिश लाइन पर पहुंचना चाहिए। आपकी यात्रा आपकी है, आपका संघर्ष आपका है, आपकी गति आपकी है। जरूरी यह है कि आप रुके नहीं, अपने अनुभवों से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। गांधी जी का जीवन हमें यह भी बताता है कि देश केवल सरकार या संस्थाओं से नहीं बनता, देश हमसे बनता है। हमारी ईमानदारी से बनता है, हमारे काम से बनता है, हमारे व्यवहार से बनता है, हमारी नागरिक जिम्मेदारी से बनता है, हमारे आसपास के लोगों के प्रति हमारे रवैये से बनता है। जब हम सड़क पर नियमों का पालन करते हैं, तब हम सार्वजनिक स्थान को साफ देखते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। जब हम किसी अफवाह को फैलाने से पहले सोचते हैं, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करते हैं, तब हम भी अपने तरीके से देश को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। यह स्वतंत्रता आंदोलन के निर्णायक चरण का शक्तिशाली संदेश था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस पूरे दौर को समझते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि गांधी जी का राजनीतिक संघर्ष अहिंसक जनभागीदारी के सिद्धांत से जुड़ा था। उनके लिए स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, वे चाहते थे कि लोगों में आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और सामाजिक चेतना विकसित हो। यही कारण है कि उनके विचारों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और नैतिक पुनर्निर्माण की बात भी समाज को दिखाई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन गांधी जी के लिए संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव था। जिस समय देश के कई लोग स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे थे, गांधी जी हिंसा से प्रभावित लोगों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास में लगे थे। यह उनके जीवन का एक गहरा पहलू है। सत्ता के केंद्र में होना ही नेतृत्व नहीं होता, कभी कभी नेतृत्व वहाँ जाना होता है जहाँ सबसे ज्यादा दर्द हो। जब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो, तब शांति की बात करना आसान नहीं होता। जब समाज विभाजित हो रहा हो, तब लोगों को जोड़ने की कोशिश करना आसान नहीं होता। साथियों, लेकिन यह वही समय होता है जब किसी व्यक्ति के मूल्यों की वास्तविक परीक्षा होती है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचारों पर चर्चा समाप्त नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके लेखन, भाषण, पत्र और जीवन पर दुनिया भर में अध्ययन होता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। उनके विचारों से सहमत होने वाले लोग भी हैं और उनके अलग अलग विचारों की आलोचना करने वाले लोग भी हैं। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को समझने का परिपक्व तरीका यही है कि हम उसे केवल पूजा की वस्तु न बना दें, और न ही केवल आलोचना तक सीमित कर दें। हमें उनके समय को समझना चाहिए, उनके मूल लेखन को पढ़ना चाहिए, उनके निर्णयों के संदर्भ को देखना चाहिए और फिर विचार करना चाहिए कि आज उनके विचार से कौन से प्रश्न हमारे लिए प्रासंगिक है। इतिहास का उद्देश्य केवल महान लोगों की सूची बनाना ही नहीं, इतिहास हमें अपने वर्तमान को समझने का अवसर भी देता है। युवा साथियों, आपके पास आज वह शक्ति है जिसकी कल्पना गांधी जी के समय में करना भी कठिन था। आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, दुनिया से जुड़ने की क्षमता है, ज्ञान तक पहुंच है। आप कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। टेक्नोलॉजी आपको पावरफुल बना सकती है, लेकिन आपका कैरेक्टर तय करेगा कि आप उस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसलिए केवल सफल बनने की कोशिश मत कीजिए, विश्वसनीय बनने की कोशिश कीजिए। केवल बड़ा करियर बनाने की कोशिश मत कीजिए, अपना कैरेक्टर अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। केवल पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिए, अपनी उपयोगिता बढ़ाने की कोशिश कीजिए। गांधी जी को समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि हम पूछें कि गांधी जी ने क्या कहा था, बल्कि ये पूछें कि गांधी जी के विचार से मैं आज क्या कर सकता हूँ। सत्य को जी सकता हूँ, अहिंसा को अपनी भाषा में ला सकता हूँ, सेवा को अपने व्यवहार में ला सकता हूँ, सादगी को अपने जीवन में जगह दे सकता हूँ। गांधी जी की कहानी शायद इसलिए आज भी हमारे सामने खड़ी है क्योंकि वह हमें कोई आसान रास्ता नहीं देती। वह हमें यह नहीं कहती कि सत्य हमेशा आसान होगा, वह हमें यह नहीं कहती कि अहिंसा हमेशा सुविधाजनक होगी, वह हमें यह नहीं कहती कि ईमानदारी रखने पर हर बात तुरंत सफलता मिलेगी। लेकिन उनका जीवन हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि कठिन रास्तों के बावजूद हम किस तरह इंसान बनना और हम किस तरह एक सफल इंसान बन सकते हैं। मैं अंत में शायद गांधी जी को याद करने का सबसे सरल तरीका यही समझता हूँ कि हम कुछ प्रश्न अपने जीवन में अवश्य पूछें। क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूँ? क्या मेरे शब्दों से किसी को अनावश्यक चोट तो नहीं पहुँच रही? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहा हूँ? क्या मैं किसी दूसरे इंसान की गरिमा का सम्मान कर रहा हूँ? क्या मैं अपने देश और समाज को केवल शिकायत की नज़र से देखता हूँ या उसमें अपना योगदान देने की भावना भी समझता हूँ? तो आइए इस 2 अक्टूबर को हम गांधी जी को केवल अतीत के एक महान व्यक्तित्व के रूप में याद न करें, उन्हें वर्तमान के एक सवाल की तरह याद करें, एक ऐसा प्रश्न जो हमसे पूछता है कि अगर हमें बेहतर भारत चाहिए तो क्या हम खुद बेहतर नागरिक बनने के लिए तैयार है? अगर हमें एक शांत समाज चाहिए तो क्या हम अपनी भाषा में शांति ला सकते हैं? अगर हमें एक ईमानदार व्यवस्था चाहिए तो क्या हम अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी रख सकते हैं? सत्य का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह हमें अपने भीतर से मजबूत बना सकता है। सत्य का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह हमें अपने भीतर से मजबूत बना सकता है। तो इस 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद करते हुए एक बार अपने आप से पूछ लिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? और फिर उस उत्तर के अनुसार अपने जीवन में एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि शायद गांधी जी को याद करने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम उनके नाम को केवल अपने शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी जगह दें। इसी विचार के साथ आप सभी को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस सत्य को केवल बोले नहीं, उसे जीने की कोशिश करें। अहिंसा को केवल इतिहास में नहीं पढ़े, अपनी भाषा और व्यवहार में उतारें। सेवा को केवल भाषण में नहीं सुने, उसे अपने आसपास के जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि स्वतंत्रता को केवल एक उपलब्धि नहीं माने बल्कि एक जिम्मेदारी समझें, और अपने देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी केवल किसी और की न समझकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी को स्वीकार करें। क्योंकि आखिर में देश हमसे ही बनता है, समाज हमसे ही बनता है, और बदलाव भी हमसे ही शुरू होना चाहिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।
0: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केएल वेणुधुनी 90.4 एफएम पे सुन रहे थे। गांधी जयंती के अवसर पे ये विशेष प्रोग्राम था जिसमें हमने सुना भूपेंद्र शेरवी को, जो फाइनल ईयर बीएमएस के स्टूडेंट है केएलईबीएम के आयुर्वेदा महाविद्यालय के। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा। नंबर है 9019904904। ये है केएल वेणुधुनी 90.4 एफएम की प्रस्तुति। नमस्कार।
2: केली कॅन्सर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव।
3: कॅन्सर कोणत्याही प्रकारचा असो अत्याधुनिक उपचार एकाच छताखाली भेटते।
2: प्रथमच उत्तर कर्नाटकामध्ये बेळगाव येथे तज्ञ आणि अनुभवी डॉक्टर अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी सहित सुसज्ज हॉस्पिटल केली कॅन्सर हॉस्पिटल।
3: केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC च्या पाठीमागे नेहरू नगर बेळगाव येते।
2: तुमच्या आरोग्यासाठी नवीन आशेचा किरण केली कॅन्सर हॉस्पिटल।
3: मिळणाऱ्या सुविधा हायली स्किल्ड डॉक्टर्स टीम, केमोथेरपी, हेमटो ऑन्कॉलॉजी, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट,
2: रोबोटिक सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, ऍडव्हान्स रेडिओथेरपी आणि यासोबत सर्व प्रकारच्या कॅन्सर वरती उपचार।
3: आमचा पत्ता केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC च्या पाठीमागे केली कॅन्सर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव येते।
2: फोन नंबर 08312552500 आणि 247377।
3: मोबाईल नंबर 6360712326 किंवा टोल फ्री नंबर 1099।
2: आजच भेट द्या केली कॅन्सर हॉस्पिटल बेळगाव येते।
4: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಬೆಳಗಾವಿಯ KLE ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಹೇರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಿಂದ ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಲು ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜಿತ BPH ಮತ್ತು MPH 5 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಇಂದೇ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ PUC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದವರು 2 ವರ್ಷಗಳ MPH ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೇರಬಹುದು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು NAC A+ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಣಿತ ಬೋಧಕರಿಂದ ನೇರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಕಾಹೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಸೈಟ್ HDSS ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಅಮೆರಿಕದ ಥಾಮಸ್ ಜೆಫರ್ಸನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ವೀಡನ್ USA, ಯುಮಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ವೀಡನ್ PHFI, ಕ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಿಕೆ, NIH, ICMR ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ UNSW ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು kaher.edu.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ವಿಳಾಸ ಕಾಹೇರ್, JNMC ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ನೆಹರು ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312444444, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4327.
2: आरोग्य हीच खरी संपत्ती. आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आता विश्वासाचं नाव केली अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च अंतर्गत केली होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल बेळगावी. आमच्याकडे अनुभवी डॉक्टर्सची टीम, सुसज्ज OPD सेवा, आधुनिक निदान सुविधा, औषध वितरण सेवा आणि रुग्ण केंद्रित उपचार उपलब्ध आहेत. ऍलर्जी, त्वचारोग, सांधेदुखी, मायग्रेन, श्वसनाचे आजार, पोटाचे विकार, महिला व बालरोग, जीवनशैलीशी संबंधित समस्या आणि दीर्घकालीन आजारांवर होमिओपॅथिक उपचार उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा केली होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल, एअरपोर्ट रोड, बसवंत कुर्ची. फोन नंबर 9448141503 आणि 8123871607. निरोगी आयुष्यासाठी आजच भेट द्या.

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसू। आज 2 अक्टूबर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। सादगी, ईमानदारी, देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक शास्त्री जी ने देश को दिया एक प्रेरणादायी मंत्र, जय जवान जय किसान। आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम याद करेंगे उनके सरल जीवन, राष्ट्र के प्रति उनके योगदान और उनके प्रेरणादायी विचारों को। तो चले हम सुनते हैं डॉक्टर रोहित पांडे जी को, जो कि पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है KLEBM के आयुर्वेदा महाविद्यालय के।
1: आदरणीय श्रोतागण, मैं डॉक्टर रोहित पांडे, पीजी प्रथम वर्ष का छात्र शाला के तंत्र से, आज मैं आप सभी को भारत के महान स्वतंत्र सेनानी, ईमानदार राजनेता, सादगी और देशभक्ति के प्रतिमूर्ति तथा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन और उनके महान योगदान पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेते ही हमारे मन में सादगी, सत्यनिष्ठा, त्याग, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना जाग उठती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि महान बनने के लिए धन, शक्ति और वैभव नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी और देश के प्रति अटूट समर्पण आवश्यक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। शास्त्री जी का बचपन आर्थिक कठिनाइयों के बीच बीता। कम उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में उनकी माता ने अत्यंत संघर्ष करते हुए उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही शास्त्री जी सरल, परिश्रमी और स्वाभिमानी थे। कठिनाइयों ने उन्हें कभी नहीं तोड़ा, बल्कि उन्हीं परिस्थितियों में उनके व्यक्तित्व को और सुदृढ़, संवेदनशील और मजबूत बनाया। उच्च शिक्षा के दौरान उन्हें काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की और से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। इसके बाद उन्होंने अपना नाम के साथ जाति सूचक उपनाम का प्रयोग करना छोड़ दिया। यह उनके समानता और मानवीय गरिमा में विश्वास को दर्शाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए चलाए गए आंदोलनों में उन्हें सक्रिय भाग लिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनके कदम कभी डगमगाए नहीं और उनका देश प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उनके लिए स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं थी, बल्कि ऐसे भारत का निर्माण भी था जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अवसर और न्याय प्राप्त हो। शास्त्री जी का जन्म गांधी जी के सत्य, अहिंसा और स्वदेशी के सिद्धांतों में गहराई से प्रेषित। उन्होंने इन सिद्धांतों को केवल अपनी भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने आचरण में भी उतारा। आजादी के बाद शास्त्री जी ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश में परिवहन और पुलिस विभाग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। बाद में वे केंद्र सरकार में भी अपने महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे भारत के रेल और परिवहन मंत्री भी बने। उनके कार्यकाल में 1956 में एक गंभीर रेल दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद पर इस्तीफा दे दिया। उनका यह निर्णय भारतीय सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही, नैतिकता और उत्तरदायित्व का एक अद्वितीय उदाहरण माना जाता। उन्होंने यह सिद्ध किया कि किसी पद पर बने रहना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में पद प्रभार संभाला। उनका कार्यकाल भले ही बहुत लंबा नहीं था, लेकिन इस सीमित अवधि में उन्होंने देश के सभी सामने खड़े अनेक गंभीर चुनौतियों का साहस और सूझबूझ के साथ सामना किया। उस समय भारत खाद्यान्न की कमी, आर्थिक कठिनाई और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा था। ऐसे समय में शास्त्री जी ने अपने शांत, सरल और दृढ़ नेतृत्व से देशवासियों में विश्वास और आत्मबल जगाया। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का सबसे प्रसिद्ध और अमर नारा था। जय जवान जय किसान यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि भारत की दो महान शक्तियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश था। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जवान और देश का पेट भरने वाले किसान। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध

0: समय शास्त्री जी ने देशवासियों में आत्मविश्वास, साहस और राष्ट्रीय एकता की भावना ले आई। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा और देश की खाद्य समृद्धि दोनों ही समान रूप से आवश्यक हो। उन्होंने किसानों और सैनिकों के योगदान को समान महत्व दिया। यही कारण है कि जय जवान जय किसान आज भी भारतीय राष्ट्र जीवन का अत्यंत प्रेरणादायक लोकप्रिय उद्घोष है। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा था। उन्होंने देशवासियों से खाद्य अन्न की बचत करने और आवश्यकता पड़ने पर एक समय का भोजन छोड़ने जैसे स्वैच्छिक प्रयासों के लिए प्रेरित किया। उनके आह्वान पर अनेक लोगों ने अनुशासन और देश हित की भावना में ऐसा प्रयास किया। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और देश को खाद्य अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया। उनके कार्यकाल में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस दौरान आगे चलकर हरित क्रांति की नींव तैयार करने वाली नीतियां और संस्थागत प्रयासों को गति मिली। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। यह देश के लिए अत्यंत कठिन समय था, लेकिन शास्त्री जी ने इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अद्भुत दृढ़ता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने भारत सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाया और देशवासियों से एकजुट होकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का आह्वान किया। अनेक नेतृत्व में भारत ने साहस और आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों का सामना किया। उस समय शास्त्री जी का शांत, संयमित और दृढ़ नेतृत्व पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए उद्देश्य से ताराचंद्र समझौता शास्त्री जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर किया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। दुर्भाग्य इसके अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। उनका निधन पूरे भारतीय राष्ट्र के लिए अत्यंत दुखद और अपूर्णीय क्षति थी। देश ने एक ऐसे महान नेता को खो दिया जिसने अपने छोटे से कार्यकाल में भी करोड़ों भारतीयों के हृदय में अमिट स्थान बना लिया था। बाद में उन्होंने मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व उनके महान गुणों का अद्भुत संगम था। वे सरल थे लेकिन कमजोर नहीं। वे विनम्र थे लेकिन दृढ़ निर्णय लेने में पूरी तरह समक्ष थे। वे सादगीपूर्ण जीवन जीते थे लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके संकल्प अत्यंत ऊंचे और अडिग थे। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि जनसेवा और राष्ट्र सेवा का पवित्र माध्यम भी हो सकता। प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व जीवन अत्यंत साधारण जीवन शैली बनाई रखी। उनकी सादगी दिखावे के लिए नहीं बल्कि उनके स्वभाव और जीवन मूल्यों का स्वाभाविक हिस्सा था। आज जब हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है तब शास्त्री जी का जीवन युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है। उनसे हम सीख सकते हैं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखना, देश हित को व्यक्तित्व हित से ऊपर रखना, किसान और सैनिक के योगदान का सम्मान करना, सादगी और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाना, असफलता या कठिनाइयों के सामने हार न मानना, अपने कार्यों की जिम्मेदारियों ईमानदारी से स्वीकार करना। आज आवश्यकता केवल इतनी नहीं है कि हम शास्त्री जी को याद करें, आवश्यकता यह है कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। यदि हम अपने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी भारतीय इतिहास में ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची महानता पद और प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि चरित्र और कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा में होती है। आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और भारत की प्रगति में अपना योगदान देंगे। आइए शास्त्री जी के अमर मंत्र का केवल न अपने होठों पर नहीं बल्कि अपने हृदय और कर्मों में भी धारण करें। जय जवान जय किसान, भारत माँ की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।
1: श्रोताओं, देश के महान नेता और सादगी की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित हमारा ये विशेष प्रोग्राम अब समाप्त होता है। शास्त्री जी का जीवन हमें सिखाता है कि महानता पद या शक्ति में नहीं बल्कि ईमानदारी, सादगी और राष्ट्र सेवा की भावना में होती है। आइए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लें। तो आज के एपिसोड में हमने डॉक्टर रोहित पांडे जी को सुना, जो पीजी फर्स्ट ईयर के

डेली बीएमके आयुर्वेदा महाविद्यालय के। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा, नंबर है 9019904904। ये है केएलयू वेणुधुनी 90.4 एफएम की प्रस्तुति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसो। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती, सत्य अहिंसा शांति और मानवता का संदेश देने वाले बापू जी को आज हम श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं। गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए भी बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आइए आज के इस विशेष अवसर पर सुनते हैं गांधी जी के जीवन, उनके विचारों और उनके आदर्शों से जुड़ी हुई कुछ प्रेरणादायी बातें। और ये हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे भूपेंद्र शेरवी, फाइनल ईयर BAMS के स्टूडेंट है, केली BM के आयुर्वेदा महाविद्यालय के स्टूडेंट है। तो चले सुनते हैं भूपेंद्र शेरवी को।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं भूपेंद्र शेरवी, आयुर्वेद औषध एवं शल्य स्नातक, अंतिम वर्ष का छात्र, केली श्री BM कंकनवाड़ी आयुर्वेदा महाविद्यालय बेलगावी से। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और आज का ये अवसर हमारे लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि 2 अक्टूबर

0: सितंबर का दिन हमें उस व्यक्तित्व की याद दिलाता है जिसका नाम भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के नैतिक और सामाजिक इतिहास में भी एक अलग स्थान रखता है। जब हम गांधी जी का नाम पुकारते हैं तो हमारे सामने तुरंत एक तस्वीर उभरती है, गोल चश्मा, सफ़ेद धोती, हाथ में लाठी, चेहरे पर शांति और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बिना किसी बड़े पद के, बिना किसी राजसत्ता के, बिना किसी हथियार के लाखों लोगों को एक दिशा में खड़ा कर दिया। लेकिन आज की इस रेडियो बातचीत में मैं गांधी जी को केवल एक तस्वीर के रूप में याद नहीं करना चाहता, मैं गांधी जी को केवल स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता के रूप में नहीं देखना चाहता। आज हम कोशिश करेंगे गांधी जी को एक ऐसे इंसान के रूप में समझने की जिसने अपने जीवन में गलतियाँ की, उनसे सीखा, अपने विचारों का प्रयोग किया और अपने भीतर झांका, धीरे धीरे अपने जीवन को ऐसे विचारों के साथ जोड़ दिया जिनका प्रभाव उनके समय से निकलकर आज तक दिखाई देता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। उस समय किसी को यह पता नहीं था कि यह बच्चा आगे चलकर महात्मा गांधी कहलाएगा और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वे भी हमारी तरह एक सामान्य बालक थे, उन्हें भी झिझक थी, कमजोरियां थी और जीवन को समझने की अपनी यात्रा थी। यही बात गांधी जी को समझने के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि वे जन्म से ही पूर्ण थे, उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने स्वयं को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश की, उन्होंने अपने जीवन को एक तैयार उत्तर की तरह नहीं देखा बल्कि एक प्रयोग की तरह देखा। शायद इसी कारण उनकी आत्मकथा का नाम उन्होंने रखा सत्य के प्रयोग। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरा जीवन पूर्ण सत्य की कहानी है, उन्होंने कहा कि यह सत्य की खोज है और उसके साथ किए गए प्रयोगों की कहानी है। यह बात आज के समय में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर अपने जीवन में पूर्णता खोजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई गलती ना हो, हमारा करियर बिल्कुल सही हो, हमारी पढ़ाई बिल्कुल सही चले, हमारे रिश्ते में कोई समस्या ना आए, हमारे फैसले हमेशा सही हो और हम हर जगह सफल हो जाएं। लेकिन गांधी जी का जीवन हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। वह हमें बताते हैं कि इंसान का जीवन गलतियों से मुक्त होने की कहानी नहीं है, बल्कि गलतियों को पहचान कर उनसे सीखते हुए आगे बढ़ने की कहानी है। आज अगर कोई युवा अपने जीवन को लेकर कंफ्यूज्ड है, अगर उसे लगता है कि दूसरे लोग उससे आगे निकल गए हैं, अगर उसे लगता है कि उसने कुछ गलत फैसले लिए हैं, तो शायद गांधी जी की जिंदगी उसे यह भरोसा दे सकती है कि किसी भी इंसान की यात्रा एक सीधी रेखा में नहीं होती। रास्ते बदलते हैं, विचार बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं और इन्हीं बदलावों के बीच व्यक्ति अपने आप को खोजता है। गांधी जी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ दक्षिण अफ्रीका में आया। वे एक युवा वकील के रूप में वहां गए थे, उनके पास डिग्री थी, पेशा था और भविष्य को लेकर अपनी योजनाएं थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ हुए नक्सलीय भेदभाव ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ट्रेन की एक घटना विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जब प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें केवल उनकी त्वचा के रंग के कारण ट्रेन से बाहर कर दिया गया। कल्पना कीजिए उस रात की, एक युवा भारतीय, एक वकील, अपने सामान के साथ स्टेशन पर बैठा है और उसके सामने एक ऐसा प्रश्न है जो केवल उसके व्यक्तिगत अपमान का प्रश्न नहीं रह जाता। वह सोच सकता था कि यह मेरे साथ हुआ है, मैं भारत वापस चला जाऊंगा, अपना जीवन जीऊंगा और इस समस्या से दूर हो जाऊंगा। लेकिन उस अनुभव ने उनके भीतर एक दूसरा प्रश्न पैदा किया। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो उन हजारों भारतीयों के साथ क्या हो रहा होगा जिनके पास अपनी आवाज उठाने की क्षमता भी नहीं है। यहीं से एक व्यक्तिगत अपमान धीरे धीरे एक सामाजिक प्रश्न में बदल गया। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हम सबके साथ कभी न कभी अन्याय होता है, कोई कोई हमें अपमानित करता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, कोई हमें कम समझता है, कोई हमारे अधिकारों को नज़रअंदाज करता है। लेकिन गांधी जी के जीवन का यह प्रसंग हमें पूछता है कि उस अनुभव के बाद हम क्या करते हैं। क्या हम केवल अपने दर्द में फंस जाते हैं या अपने अनुभव से एक व्यापक समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह के विचारों को विकसित किया और अन्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की एक नई पद्धति को आकार दिया। सत्याग्रह केवल विरोध करने का नाम नहीं था, उसमें सत्य के प्रति आग्रह था, लेकिन साथ ही यह विश्वास भी था कि अन्याय का विरोध करते हुए इंसान को अपनी मानवता नहीं खोनी चाहिए। आज जब हम सत्याग्रह शब्द सुनते हैं तो शायद हमारे सामने आंदोलनों की तस्वीर आती है, लेकिन अगर हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में समझे तो इसकी गहराई और भी स्पष्ट दिखाई देती है। मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बात लिखता है, आप गुस्से में जवाब देते हैं, वह और कठोर भाषा इस्तेमाल करता है, आप उससे भी ज्यादा कठोर शब्द लिखते हैं और देखते ही देखते एक छोटी सी बात दो लोगों के अहंकार की लड़ाई बन जाती है। अब सवाल यह है कि आपकी प्रतिक्रिया ने समस्या हल की या केवल आपके गुस्से को बाहर निकाला। गांधी जी के विचार हमें अपने व्यवहार पर यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या हमारा तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा उद्देश्य। अगर हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारी भाषा हिंसक है, अगर हम ईमानदारी की बात करते हैं लेकिन अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हैं, अगर हम सम्मान की मांग करते हैं लेकिन दूसरों का अपमान करते हैं, तो हमारे विचार और हमारे व्यवहार के बीच में एक दूरी पैदा हो जाती है। गांधी जी का जीवन इस दूरी को कम करने का प्रयास था। उन्होंने अपने विचारों को अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश की और यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व को केवल उनके भाषणों से नहीं बल्कि उनके जीवन से समझना जरूरी है। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा देश था जिसकी समस्याएं केवल किताबों में नहीं थी, भारत के गांव थे, किसान थे, मजदूर थे, गरीबी थी, सामाजिक भेदभाव था, अशिक्षा थी और औपनिवेशिक शासन की जटिल व्यवस्था थी। गांधी जी ने भारत को समझने के लिए लोगों के बीच जाने का रास्ता चुना। चंपारण, खेड़ा और अन्य आंदोलनों में उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझा और उनके साथ खड़े हुए। यहाँ गांधी जी के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष दिखाई देता है। नेतृत्व केवल बोलना नहीं है, नेतृत्व का पहला कदम सुनना है, किसी भी समस्याओं को वास्तव में समझना है। आज हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, लेकिन हम खुद कितनी बार दूसरे व्यक्ति को बिना बीच में रोके सुनते हैं। परिवार में, कॉलेज में, वर्क प्लेस में, समाज में और मित्रता में बहुत सारे विवाद इसलिए नहीं होते कि लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करता। गांधी जी की सार्वजनिक यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि परिवर्तन केवल बड़े भाषणों से नहीं आता, कई बार वह एक साधारण व्यक्ति की बात ध्यान से सुनने से शुरू होता है। फिर आता है 1930 का वह दौर जिसने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च। नमक एक ऐसी चीज जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कभी विशेष महत्व देते हैं, लेकिन गांधी जी ने उसी नमक को औपनिवेशिक कानून के खिलाफ जन आंदोलन का प्रतीक बना दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ दांडी की ओर निकले और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक संदेश था कि परिवर्तन के लिए हमेशा बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी एक छोटी सी चीज़ भी पूरे समाज को जोड़ने का माध्यम बन सकती है। आज हम अपने जीवन में अक्सर सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरा एक निर्णय क्या बदल देगा, मेरी एक आवाज़ का क्या महत्व है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि बड़े परिवर्तन कई बार छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। एक व्यक्ति गलत काम करने से मना करता है, एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करने से मना करता है, एक कर्मचारी गलत जानकारी देने से मना करता है, एक नागरिक सड़क पर कचरा नहीं फेंकता, एक युवा किसी अफवाह को बिना जांचे आगे नहीं बढ़ाता। ये सभी बहुत छोटे छोटे निर्णय लग सकते हैं, लेकिन समाज छोटे छोटे निर्णयों से ही बनता है। गांधी जी के जीवन की एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने केवल दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपने ऊपर भी प्रयोग किए। उनका जीवन आत्म अनुशासन, आत्म परीक्षण और आत्म संयम से जुड़ा रहा। आज की दुनिया में हम अक्सर बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त बदलें, हमारा परिवार बदले, हमारे शिक्षक बदले, हमारी व्यवस्था बदले, हमारा समाज बदले, दूसरे लोग से ज़्यादा ईमानदार बने। लेकिन हम कितनी बार खुद से पूछते हैं कि मुझे क्या बदलना चाहिए। गांधी जी के विचार हमें इस प्रश्न की ओर ले जाते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सम्मान दें तो क्या मैं दूसरों का सम्मान करता हूँ? अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे सच बोले तो क्या मैं खुद सच बोलता हूँ? अगर मैं चाहता हूँ कि समाज में हिंसा कम हो तो क्या मेरी भाषा दूसरों के प्रति सम्मानपूर्ण है? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा देश बेहतर बने तो क्या मैं अपने छोटे से दायरे में अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा हूँ? यह प्रश्न असहज हो सकते हैं साथियों, लेकिन शायद इसी असहजता से आत्मचिंतन शुरू होता है। आज के युवा के सामने एक अलग प्रकार की चुनौती है। गांधी जी के समय में कम्युनिकेशन के साधन सीमित थे, आज हमारे पास पूरी दुनिया हमारी जेब में है। एक स्मार्टफोन हमें कुछ सेकंड में लाखों लोगों से जोड़ सकता है। ज्ञान तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान है। शिक्षा, कोर्स, बुक्स, लेक्चर्स, रिसर्च, कम्युनिकेशन और कैरियर के अवसरों का विस्तार हुआ है, लेकिन इसी के साथ डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ा है। हमारा ध्यान लगातार बदलता रहता है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक शॉर्ट वीडियो, एक कमेंट और हमारा ध्यान उस काम से हट जाता है जिसे हम करना चाहते थे। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन बहुत कम चीज़ों पर गहराई से काम करते हैं। गांधी जी का जीवन हमें एकाग्रता की शक्ति के बारे में सोचने का अवसर देता है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ मूल्यों को चुना और लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहे। आज के युवा के लिए शायद सबसे जरूरी बात यह है कि वह अपनी दिशा तय करे। हर ट्रेंड का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर नोटिफिकेशन का जवाब देना जरूरी नहीं है। आपको तय करना है कि आप अपने जीवन में किस दिशा में जाना चाहते हैं और फिर रोज थोड़ा थोड़ा उस दिशा में आगे बढ़ते जाना है। सत्य गांधी जी के जीवन का केंद्रीय विचार था, लेकिन सत्य केवल बोलने की चीज नहीं है, सत्य को जीना पड़ता है। सच बोलना तब आसान होता है जब सच बोलने से हमें कोई नुकसान न हो। असली परीक्षा तब होती है जब सच बोलने की कीमत चुकानी पड़े। एक विद्यार्थी के लिए सत्य का अर्थ हो सकता है यह स्वीकार करना कि उसे किसी विषय की जानकारी नहीं है। एक प्रोफेशनल के लिए सत्य का अर्थ हो सकता है अपनी गलती स्वीकार करना। एक व्यापारी के लिए इसका अर्थ हो सकता है ग्राहक को गलत जानकारी न देना। एक दोस्त के लिए इसका अर्थ हो सकता है सामने वाले से ईमानदारी से बात करना। और अपने लिए सत्य का अर्थ है अपनी कमजोरियों को पहचानना। कई बार सबसे कठिन सत्य वह होता है जो हमें अपने बारे में स्वीकार करना पड़ता है। हम दूसरों की गलतियां आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियों को स्वीकार करना कठिन होता है। गांधी जी का जीवन हमें आत्म परीक्षण की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। अहिंसा को भी आज के समय में नए तरीके से समझने की आवश्यकता है। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा न करना नहीं है, हमारा और हमारी भाषा भी चोट पहुंचा सकती है। एक कमेंट, एक मजाक, एक अफवाह, किसी की कमजोरी का सार्वजनिक मजाक, किसी समुदाय के बारे में अपमानजनक बात, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बिना प्रमाण नुकसान पहुंचाना, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनका अक्सर वास्तविक जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन आज के समय में अहिंसा का अर्थ यह भी हो सकता है कि हम असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रखें। हम किसी व्यक्ति के विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसे इंसान के रूप में सम्मान दे सकते हैं। लोकतंत्र और सभ्य समाज के लिए यह क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। असहमति दुश्मनी नहीं है, अलग विचार होना गलत होना नहीं है। किसी व्यक्ति को समझने के लिए जरूरी नहीं कि हम उससे सहमत ही हो। हमें केवल इतना सीखना है कि हम असहमति को नफरत में बदलने से रोकें। आज हमारे समाज में अलग अलग विचार, धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, जीवन शैली और राजनीतिक मत हैं। विविधता भारत की वास्तविकता है। समस्याएं अलग होने में नहीं है, समस्याएं तब शुरू होती है जब हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति हमसे अलग है वो हमारा दुश्मन है। गांधी जी के जीवन के अंतिम वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा के बीच शांति स्थापित करने के उनके प्रयास इस बात की याद दिलाते हैं कि शांति की सबसे अधिक जरूरत उसी समय होती है जब समाज में अशांति हो। जब सब शांत हो तब शांति की बात करना आसान है, लेकिन जब लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो तब संवाद और शांति के लिए बड़ा और खड़ा होना कठिन है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ऐसे ही कठिन समय का सामना किया और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए प्रयास किए। आज हमें एक और तरह की स्वच्छता की जरूरत है और वह है सूचना की स्वच्छता। गांधी जी के समय में समाचार पत्र और पत्रिकाएं विचारों को समाज तक पहुंचाने के प्रमुख माध्यम थे। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति की बात कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। यह एक बड़ी शक्ति है, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले हमें पूछना चाहिए, क्या यह सच है, इसका स्रोत क्या है, क्या इसे किसी विश्वसनीय स्थान से वेरीफाई किया गया है, इसका स्रोत क्या है, क्या इसे विश्वसनीय स्थान से वेरीफाई किया गया है, क्या यह किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर सकता है, क्या मैं बिना जांचे इसे आगे बढ़ाकर किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। गांधी जी की सादगी की चर्चा भी अक्सर होती है, लेकिन सादगी का अर्थ विकास या सुविधाओं का विरोध करना नहीं है। सादगी का एक अर्थ यह है कि हम अपनी जरूरत और इच्छा के बीच के अंतर को समझें। आज हमारे सामने हर दिन नई चीज़ें आती है, नया फ़ोन, नया गैजेट, नया फैशन, नया ट्रेंड, नया लाइफस्टाइल। हमें हमेशा यह संदेश मिलता रहता है कि अगली चीज़ खरीदने के बाद हम और भी ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी चीज़ें हमारे नियंत्रण में है या हम चीज़ों के नियंत्रण में है। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को चला रही है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन क्या पैसा ही हमारी पहचान बन गया है। आराम जरूरी है, लेकिन क्या आराम ने हमारी मेहनत करने की क्षमता कम कर दी है। गांधी जी का जीवन हमें कम से कम उपकरणों में जीने की क्षमता के बारे में सोचने का अवसर देता है। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उनकी तरह जीवन जिए, जरूरी यह है कि हम अपने जीवन में यह पहचान सके कि हमें वास्तव में क्या चाहिए और क्या केवल हमारी इच्छा है। स्वास्थ्य के संदर्भ में भी गांधी जी के विचारों को समझा जा सकता है। आज हमारे पास आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, दवाएं, डायग्नोसिस और टेक्नोलॉजी है, इसके बावजूद लाइफस्टाइल रिलेटेड समस्याएं बढ़ रही है। नींद की कमी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनियमित भोजन, लगातार स्क्रीन टाइम, तनाव और मानसिक थकान जैसी समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी न होना नहीं है, स्वास्थ्य का अर्थ है अपने शरीर और मन की जिम्मेदारी लेना। कभी फ़ोन को किनारे रखकर अपने परिवार के साथ बैठना, कभी प्रकृति में समय बिताना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित शारीरिक गतिविधियां करना और समय समय पर अपने मन की स्थिति को समझना भी जीवन का हिस्सा होना चाहिए। सेवा गांधी जी के जीवन और विचारों का एक महत्वपूर्ण पक्ष थी, लेकिन सेवा हमेशा किसी बहुत बड़े काम का नाम नहीं है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भी सेवा है, लेकिन किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना भी सेवा है, किसी बच्चे को पढ़ाना सेवा है, किसी परेशान मित्र के साथ बैठकर उसको समझाना भी सेवा है, किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना भी सेवा है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सम्मान से व्यवहार करना जिसे समाज अक्सर नज़रअंदाज करता है वो भी सेवा है। सेवा का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें सामने वाले को एहसान महसूस न हो बल्कि सम्मान महसूस हो। समाज तभी मजबूत होता है जब लोग केवल यह नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि कभी कभी यह भी पूछें कि मैं क्या दे सकता हूँ। अब मैं विशेष रूप से युवाओं से कुछ कहना चाहता हूँ। साथियों, आज हमारे पास अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कंपटीशन और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। हर दिन हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे आगे निकल रहे हैं। किसी का रिजल्ट आता है, किसी का करियर अच्छा है, किसी के पास पैसा है तो किसी के पास फॉलोवर्स हैं। लेकिन सोशल मीडिया हमें किसी भी और किसी की भी पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाता, यह केवल चुने हुए क्षण दिखाता है। हम दूसरे व्यक्ति की उपलब्धि देखते हैं, उसकी रातों की मेहनत नहीं देखते। हम उसका रिजल्ट देखते हैं, उसके फेलियर को नहीं देखते। हम उसकी सक्सेस को देखते हैं, उसकी कंटिन्यूटी को नहीं देखते। इसलिए अगर आज कोई युवा अपने जीवन को लेकर परेशान है, अगर उसे लगता है कि वह पीछे रह गया है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि जीवन कोई रेस नहीं है दोस्तों, जिसमें हर व्यक्ति एक ही समय पर फिनिश लाइन पर पहुंचना चाहिए। आपकी यात्रा आपकी है, आपका संघर्ष आपका है, आपकी गति आपकी है। जरूरी यह है कि आप रुके नहीं, अपने अनुभवों से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। गांधी जी का जीवन हमें यह भी बताता है कि देश केवल सरकार या संस्थाओं से नहीं बनता, देश हमसे बनता है। हमारी ईमानदारी से बनता है, हमारे काम से बनता है, हमारे व्यवहार से बनता है, हमारी नागरिक जिम्मेदारी से बनता है, हमारे आसपास के लोगों के प्रति हमारे रवैये से बनता है। जब हम सड़क पर नियमों का पालन करते हैं, तब हम सार्वजनिक स्थान को साफ देखते हैं। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तब हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। जब हम किसी अफवाह को फैलाने से पहले सोचते हैं, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करते हैं, तब हम भी अपने तरीके से देश को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। यह स्वतंत्रता आंदोलन के निर्णायक चरण का शक्तिशाली संदेश था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस पूरे दौर को समझते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि गांधी जी का राजनीतिक संघर्ष अहिंसक जनभागीदारी के सिद्धांत से जुड़ा था। उनके लिए स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, वे चाहते थे कि लोगों में आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और सामाजिक चेतना विकसित हो। यही कारण है कि उनके विचारों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और नैतिक पुनर्निर्माण की बात भी समाज को दिखाई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन गांधी जी के लिए संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव था। जिस समय देश के कई लोग स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे थे, गांधी जी हिंसा से प्रभावित लोगों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास में लगे थे। यह उनके जीवन का एक गहरा पहलू है। सत्ता के केंद्र में होना ही नेतृत्व नहीं होता, कभी कभी नेतृत्व वहाँ जाना होता है जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द हो। जब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो, तब शांति की बात करना आसान नहीं होता। जब समाज विभाजित हो रहा हो, तब लोगों को जोड़ने की कोशिश करना आसान नहीं होता। साथियों, लेकिन यह वही समय होता है जब किसी व्यक्ति के मूल्यों की वास्तविक परीक्षा होती है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचारों पर चर्चा समाप्त नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके लेखन, भाषण, पत्र और जीवन पर दुनिया भर में अध्ययन होता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। उनके विचारों से सहमत होने वाले लोग भी हैं और उनके अलग अलग विचारों की आलोचना करने वाले लोग भी हैं। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को समझने का परिपक्व तरीका यही है कि हम उसे केवल पूजा की वस्तु न बना दें और न ही केवल आलोचना तक सीमित कर दें। हमें उनके समय को समझना चाहिए, उनके मूल लेखन को पढ़ना चाहिए, उनके निर्णयों के संदर्भ को देखना चाहिए और फिर विचार करना चाहिए कि आज उनके विचार से कौन से प्रश्न हमारे लिए प्रासंगिक है। इतिहास का उद्देश्य केवल महान लोगों की सूची बनाना ही नहीं, इतिहास हमें अपने वर्तमान को समझने का अवसर भी देता है। युवा साथियों, आपके पास आज वह शक्ति है जिसकी कल्पना गांधी जी के समय में करना भी कठिन था। आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, दुनिया से जुड़ने की क्षमता है, ज्ञान तक पहुंच है। आप कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। टेक्नोलॉजी आपको पावरफुल बना सकती है, लेकिन आपका कैरेक्टर तय करेगा कि आप उस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसलिए केवल सफल बनने की कोशिश मत कीजिए, विश्वसनीय बनने की कोशिश कीजिए। केवल बड़ा करियर बनाने की कोशिश मत कीजिए, अपना करेक्टर अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, केवल पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिए, अपनी उपयोगिता बढ़ाने की कोशिश कीजिए। गांधी जी को समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि हम पूछें कि गांधी जी ने क्या कहा था, बल्कि यह पूछें कि गांधी जी के विचार से मैं आज क्या कर सकता हूँ, सत्य को जी सकता हूँ, अहिंसा को अपनी भाषा में ला सकता हूँ, सेवा को अपने व्यवहार में ला सकता हूँ, सादगी को अपने जीवन में जगह दे सकता हूँ। गांधी जी की कहानी शायद इसलिए आज भी हमारे सामने खड़ी है क्योंकि वह हमें कोई आसान रास्ता नहीं देती। वह हमें यह नहीं कहती कि सत्य हमेशा आसान होगा, वह हमें यह नहीं कहती कि अहिंसा हमेशा सुविधाजनक होगी, वह हमें यह नहीं कहती कि ईमानदारी रखने पर हर बार तुरंत सफलता मिलेगी, लेकिन उनका जीवन हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि कठिन रास्तों के बावजूद हम किस तरह इंसान बनना और हम किस तरह एक सफल इंसान बन सकते हैं। मैं अंत में शायद गांधी जी को याद करने का सबसे सरल तरीका यही समझता हूँ कि हम कुछ प्रश्न अपने जीवन में अवश्य पूछें। क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूँ? क्या मेरे शब्दों से किसी को अनावश्यक चोट तो नहीं पहुँच रही? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहा हूँ? क्या मैं किसी दूसरे इंसान की गरिमा का सम्मान कर रहा हूँ? क्या मैं अपने देश और समाज को केवल शिकायत की नज़र से देखता हूँ या उसमें अपना योगदान देने की भावना भी समझता हूँ? तो आइए इस 2 अक्टूबर को हम गांधी जी को केवल अतीत के एक महान व्यक्तित्व के रूप में याद न करें, उन्हें वर्तमान के एक सवाल की तरह याद करें, एक ऐसा प्रश्न जो हमसे पूछता है कि अगर हमें बेहतर भारत चाहिए तो क्या हम खुद बेहतर नागरिक बनने के लिए तैयार है? अगर हमें एक शांत समाज चाहिए तो क्या हम अपनी भाषा में शांति ला सकते हैं? अगर हमें एक ईमानदार व्यवस्था चाहिए तो क्या हम अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी रख सकते हैं? सत्य का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह हमें अपने भीतर से मजबूत बना सकता है। सत्य का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह हमें अपने भीतर से मजबूत बना सकता है। तो इस 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद करते हुए एक बार अपने आप से पूछ लिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, और फिर उस उत्तर के अनुसार अपने जीवन में एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि शायद गांधी जी को याद करने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम उनके नाम को केवल अपने शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी जगा दें। इसी विचार के साथ आप सभी को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस सत्य को केवल बोले नहीं, उसे जीने की कोशिश करें, अहिंसा को केवल इतिहास में नहीं पढ़े, अपनी भाषा और व्यवहार में उतारें, सेवा को केवल भाषण में नहीं सुने, उसे अपने आसपास के जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि स्वतंत्रता को केवल एक उपलब्धि नहीं माने बल्कि एक जिम्मेदारी समझें, और अपने देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी केवल किसी और की न समझकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी को स्वीकार करें, क्योंकि आखिर में देश हमसे ही बनता है, समाज हमसे ही बनता है, और बदलाव भी हमसे ही शुरू होना चाहिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आपके लिए वेणुधुनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। गांधी जयंती के अवसर पे एक विशेष प्रोग्राम था जिसमें हमने सुना भूपेंद्र शेरवी को, जो फाइनल ईयर BMS के स्टूडेंट है KLEBM के आयुर्वेदा महाविद्यालय के। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा, नंबर है 9019904904। ये है KLE वेणुधुनी 90.4 FM।

गुड इवनिंग एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे और एक अच्छी शाम गुजार रहे होंगे। आपने ट्यून किया है बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासू, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो दोस्त और होस्ट यानी कि RJ आयुष। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमय टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। चलिए मैं आपको थोड़े से हिंट देता हूं। आज का टॉपिक होने वाला है मोर अबाउट स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में। तो आप गेस कीजिए कि वो टॉपिक क्या है और साथ ही करेंगे आपका मनोरंजन। तो आपको क्या करना है, आपको बने रहना है और ये टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सुनाऊंगा कुछ जबरदस्त गाने। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4।

Hello and welcome back one more time to your favorite show, Be Relaxed, and you have tuned into Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu with RJ Ayush. So, dosto, aur intezar na karvate hue, main aapko batata hu aaj ka wo interesting topic jo ki hone wala hai galaxies ke upar. Ji nahi, main kisi phone ki galaxy ki baat nahi kar raha hu, balki main baat kar raha hu aakash ganga ki jisme hum rehte hain. Aaj hum baat karne wale hain the fascinating world of our own Milky Way galaxy ke bare mein, uski gehrai ke bare mein. काफी लोगों को कई सारी जानकारियां होंगी इसके बारे में, पर हमको थोड़ा सा डिटेल में जानने मिलेगा आज इस एपिसोड में. तो चलिए शुरू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली मिल्की वे गैलेक्सी इज. मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं, इट्स अ ब्रेथ टेकिंग एक्सपेंस ऑफ स्टार्स, गैसेस, डस्ट, प्लैनेट्स एंड मिस्टीरियस डार्क मैटर्स. इट एस्टिमेटेड टू कंटेन ओवर 100 बिलियन स्टार्स. बात करें मिल्की वे गैलेक्सी के साइज की, तो इसका डायामीटर है वो है 1,00,000 लाइट ईयर, और इसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताता हूँ जो है 1,000 लाइट ईयर्स. मतलब बहुत ही विशाल का है. आप सभी सुनकर थोड़े से हैरान हो जाएंगे, लेकिन हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके अद्भुत दृश्य के बारे में आफ्टर सम सुपर हिट सॉन्ग्स. तो आपको क्या करना है, आपको कर देनी है रेडियो की वॉल्यूम एकदम फुल, और आपको बने रहना है हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर.

0: दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर और आज की रंगीन शाम में आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 एफएम केएलई कनाडा सुपर। और आज हम बात कर रहे हैं द मार्वेलस ऑफ मिल्की वे के बारे में। और आप ये तो जान गए होंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी है क्या, ऐसी आकाश गंगा जिसमें हमारा प्लेनेट यानी अर्थ भी आता है या उसका हिस्सा है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो हर गैलेक्सी का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक स्प्रिंग होता है। एंड द मिल्की वे ऑल्सो showcases a stunning spiral structure with four main arms जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। पहले आर्म का नाम है पर्सियस आर्म, दूसरे आर्म का नाम है द सैगिटेरियस आर्म, द नॉमा आर्म एंड द सेंटोरियस आर्म। आप इमेजिन कीजिए ये एक पिनव्हील की तरह जैसे स्प्रिंग होता है ना, वैसे ही जिसमें स्टार्स, गैस क्लाउड्स एंड द स्टार फॉर्मिंग रीजन लाइनिंग दीज आर्म्स। अवर सोलर सिस्टम रिसाइड्स इन द ओरियन आर्म, अ स्मॉलेस्ट पफ ऑफ आई थिंक द सैगिटेरियस आर्म। बहुत ज्यादा जानकारी है ना। वैसे आप मुझे बताइए क्या स्पेस हमारा इंटरेस्टिंग है? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ऐसी ही मनोरंजन जानकारियों के लिए आपको क्या करना है, आपको बने रहना है हमारे साथ और सुनते रहना है ध्वनि ध्वनि ही वेनु ध्वनि ही 90.4 केएलई खाना सू।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
2: कौन मांगता?
1: ए जूली जूली,

0: जैक पिया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली,

दोस्तों देखिए, आपने मिल्की वे गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को समझा, कैसे मिलकर बनी है उसको समझा। आइए जानते हैं इसके मिस्टीरियस गैलेक्टिक सेंटर के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज इट्स सेंट्रल रीजन, जो हमसे तकरीबन 27,000 लाइट ईयर्स दूर है। एक मैसिव ब्लैक होल। ब्लैक होल का नाम तो आपने काफी मूवीज या थ्योरीज में सुना होगा। लाइट ईयर्स बेसिकली एक ड्यूरेशन होती है, यानी लाइट कितना ट्रेवल करती है एक साल में। तो 27,000 ईयर्स में लाइट जितना ट्रेवल करेगी, ये जगह हमसे उतनी ज्यादा दूर है। दिस ग्रेविटेशनल बेमोथ हैज अ मास ऑफ अबाउट 4 मिलियन टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ, जिसके इर्द गिर्द एक क्लस्टर है स्टार्स का, जिसका नाम है न्यूक्लियर स्टार क्लस्टर। उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ नया जानने मिल रहा होगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियां मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए बजाऊंगा कुछ धमाकेदार गाने और जबरदस्त गाने, तो सुनते रहिए मेरे साथ 90.4 KLE कनसू

हेलो वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन एंड पीपल ऑफ ऑल द एजेस, आप सुन रहे हैं बेलगम का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेनू ध्वनि 90.4 FM KLE कनासू विद RJ आयुष। बात करेंगे स्टीलर डायवर्सिटी की। दोस्तों हमारी गैलेक्सी एक घर है एस्टोनिंग वैरायटी ऑफ स्टार्स की, जिसने जिसके अपने अपने अलग अलग साइजेस है, शेप्स है, टेम्परेचर है, लाइफ साइकिल है, फ्रॉम हॉट ब्लू स्टार्स टू द कूल रेड वंस, द मिल्की वेज डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफर्स अस अ ग्लिम्प्स into the life cycle of stars, from birth in massive clouds of gas and dust to dramatic deaths in supernova explosions. दोस्तों खैर ये सारी जानकारी तो मैं आपको बताते रहूंगा और देते रहूंगा, लेकिन आप बताइए क्या आपने भी इसके बारे में कहीं पढ़ा था या स्कूल में टेक्स्ट बुक में, ऑफकोर्स आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन जनरली कहीं सुना था क्या? लेकिन क्या आपको पता है हमारे साइंटिस्ट कई ऐसी अलग अलग खोज में है जिससे कई नए राज खुल सकते हैं, कई थ्योरीज में तो ये भी देखा गया है कि सोलर सिस्टम में और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं जहां पर एयर वॉटर और लाइफ है या फिर एलियंस भी रहते हैं। आप करिए विचार इसी बारे में और हम सुनाते हैं आपको कुछ जबरदस्त गाने। सुनते रहिए वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनासू।

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और आज के शो बी रिलैक्स में हम बात कर रहे हैं उस विशालकाय आकाशगंगा की यानी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। बात करते हैं इसके इवोल्यूशन की यानी गैलेक्टिक इवोल्यूशन की। तो दोस्तों, तो मिल्की वे हैज इवॉल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स अंडरगोइंग वेरियस फेसेस ऑफ स्टार फॉर्मेशन एंड रीशेपिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस विद अदर गैलेक्सीज। और आज भी ये खोज जारी है इनके कैसे चेंज आता है और इनकी हिस्ट्री को समझा जा रहा है, साथ ही फ्यूचर भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है। Isn't it interesting? Very interesting. चलिए, स्पेस में आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ फिल्म्स बताता हूँ। आजकल स्पेस फिल्म्स काफी फैसिनेशन क्रिएट कर रही है, इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है। कुछ फिल्म्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2014 में आई इंटरस्टेलर फिल्म, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, चाहे तो पैसेंजर्स देख सकते हैं। और हाल ही में वर्ल्ड वाइज फेमस रिलीज हुई अवतार द वे ऑफ वॉटर और द प्रीवियस वर्जन ऑफ इट। और अब मैं आपके लिए प्ले करूंगा कुछ जबरदस्त गाने, तो सुनते रहिए आज आयुष को ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 कहना सुपर।
1: यो बॉयस, आई एम सिंगिंग साउंड सुपर साउंड।

0: दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं द मार्वल्स ऑफ मिल्की वे के बारे में। इसकी बनावट और शेप्स को हमने समझ लिया। आइए जानते हैं कि क्या हमारा सोलर सिस्टम में कई और ऐसे प्लेनेट्स हैं जिस पे लाइफ रहती है। तो आपको मैं बता दूं, साइंटिस्ट आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं एंड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड और टू फाइंड अ गुड प्लेस टू लिव ऑन अदर प्लैनेट। एज वी एक्सप्लोर द मिल्की वे वी डिस्कवर एक्सोप्लैनेट्स ऑर्बिटिंग स्टार्स बियॉन्ड अवर सोलर सिस्टम। सम ऑफ दीज एक्सोप्लैनेट्स माइट बी सुटेबल फॉर लाइफ एज वी नो। खैर ये तो अब फ्यूचर बताएगा कि अगर ये है या नहीं है, ये हमें भी नहीं पता, ये तो बस थ्योरीज में लिखा गया है। अब आप बताइए आपको आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड कैसा लगा। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने मिला। एंड देयर यू हैव इट, अ ग्लिम्प्स इनटू द कैप्टिवेटिंग मिल्की वे गैलेक्सी, आवर कॉस्मिक होम। इट्स मिस्ट्रीज कंटिन्यू टू इंस्पायर एस्ट्रोनॉमर्स एंड द स्पेस एंथुसियास्ट्स अलाइक। बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको सुनते रहना है हमारा शो बी रिलैक्स, जो आता है हर शाम 5 से लेकर 8 बजे तक, ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनासू पर। दिस इज योर होस्ट आरजे आयुष साइनिंग ऑफ। जल्द मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।
1: एवरीथिंग ओज़ टू एग्जिस्टेंस सोली।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसू। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती, सत्य अहिंसा शांति और मानवता का संदेश देने वाले बापू जी को आज हम श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं। गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए भी बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आइए आज के इस विशेष अवसर पर सुनते हैं गांधी जी के जीवन, उनके विचारों और उनके आदर्शों से जुड़ी हुई कुछ प्रेरणादायी बातें। और ये हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे भूपेंद्र शेरवी, फाइनल ईयर BAMS के स्टूडेंट है, KLE BM के आयुर्वेदा महाविद्यालय के स्टूडेंट है। तो चले सुनते हैं भूपेंद्र शेरवी को।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं भूपेंद्र शेरवी, आयुर्वेद औषध एवं शल्य स्नातक, अंतिम वर्ष का छात्र, KLE श्री BM कंकनवाड़ी आयुर्वेदा महाविद्यालय बेलगावी से। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और आज का ये अवसर हमारे लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि 2 अक्टूबर का दिन हमें उस व्यक्तित्व की याद दिलाता है जिसका नाम भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के नैतिक और सामाजिक इतिहास में भी एक अलग स्थान रखता है। जब हम गांधी जी का नाम पुकारते हैं तो हमारे सामने तुरंत एक तस्वीर उभरती है, गोल चश्मा, सफ़ेद धोती, हाथ में लाठी, चेहरे पर शांति और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बिना किसी बड़े पद के, बिना किसी राजसत्ता के, बिना किसी हथियार के लाखों लोगों को एक दिशा में खड़ा कर दिया। लेकिन आज की इस रेडियो बातचीत में मैं गांधी जी को केवल एक तस्वीर के रूप में याद नहीं करना चाहता, मैं गांधी जी को केवल स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता के रूप में नहीं देखना चाहता। आज हम कोशिश करेंगे गांधी जी को एक ऐसे इंसान के रूप में समझने की जिसने अपने जीवन में गलतियां की, उनसे सीखा, अपने विचारों का प्रयोग किया और अपने भीतर जाकर धीरे धीरे अपने जीवन को ऐसे विचारों के साथ जोड़ दिया जिनका प्रभाव उनके समय से निकलकर आज तक दिखाई देता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। उस समय किसी को यह पता नहीं था कि यह बच्चा आगे चलकर महात्मा गांधी कहलाएगा और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वे भी हमारी तरह एक सामान्य बालक थे, उन्हें भी झिझक थी, कमजोरियां थी और जीवन को समझने की अपनी यात्रा थी। यही बात गांधी जी को समझने के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी महानता इस बात में नहीं थी

कि वे जन्म से ही पूर्ण थे। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने स्वयं को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने जीवन को एक तैयार उत्तर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक प्रयोग की तरह देखा। शायद इसी कारण उनकी आत्मकथा का नाम उन्होंने रखा सत्य के प्रयोग। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरा जीवन पूर्ण सत्य की कहानी है, उन्होंने कहा कि यह सत्य की खोज है और उसके साथ किए गए प्रयोगों की कहानी है। यह बात आज के समय में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर अपने जीवन में पूर्णता खोजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई गलती ना हो, हमारा करियर बिल्कुल सही हो, हमारी पढ़ाई बिल्कुल सही चले, हमारे रिश्ते में कोई समस्या ना आए, हमारे फैसले हमेशा सही हो और हम हर जगह सफल हो जाएं। लेकिन गांधी जी का जीवन हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। वह हमें बताते हैं कि इंसान का जीवन गलतियों से मुक्त होने की कहानी नहीं है, बल्कि गलतियों को पहचान कर उनसे सीखते हुए आगे बढ़ने की कहानी है। आज अगर कोई युवा अपने जीवन को लेकर कन्फ्यूज्ड है, अगर उसे लगता है कि दूसरे लोग उससे आगे निकल गए हैं, अगर उसे लगता है कि उसने कुछ गलत फैसले लिए हैं, तो शायद गांधी जी की जिंदगी उसे यह भरोसा दे सकती है कि किसी भी इंसान की यात्रा एक सीधी रेखा में नहीं होती। रास्ते बदलते हैं, विचार बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं और इन्हीं बदलावों के बीच व्यक्ति अपने आप को खोजता है। गांधी जी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ दक्षिण अफ्रीका में आया। वे एक युवा वकील के रूप में वहां गए थे। उनके पास डिग्री थी, पेशा था और भविष्य को लेकर अपनी योजनाएं थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ हुए नक्सलीय भेदभाव ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ट्रेन की एक घटना विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जब प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें केवल उनकी त्वचा के रंग के कारण ट्रेन से बाहर कर दिया गया। कल्पना कीजिए उस रात की, एक युवा भारतीय, एक वकील अपने सामान के साथ स्टेशन पर बैठा है और उसके सामने एक ऐसा प्रश्न है जो केवल उसके व्यक्तिगत अपमान का प्रश्न नहीं रह जाता। वह सोच सकता था कि यह मेरे साथ हुआ है, मैं भारत वापस चला जाऊंगा, अपना जीवन जीऊंगा और इस समस्या से दूर हो जाऊंगा। लेकिन उस अनुभव ने उनके भीतर एक दूसरा प्रश्न पैदा किया। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो उन हजारों भारतीयों के साथ क्या हो रहा होगा जिनके पास अपनी आवाज उठाने की क्षमता भी नहीं है। यहीं से एक व्यक्तिगत अपमान धीरे धीरे एक सामाजिक प्रश्न में बदल गया। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हम सबके साथ कभी न कभी अन्याय होता है, कोई हमें अपमानित करता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, कोई हमें कम समझता है, कोई हमारे अधिकारों को नज़रअंदाज करता है। लेकिन गांधी जी के जीवन का यह प्रसंग हमें पूछता है कि उस अनुभव के बाद हम क्या करते हैं। क्या हम केवल अपने दर्द में फंस जाते हैं या अपने अनुभव से एक व्यापक समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह के विचारों को विकसित किया और अन्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की एक नई पद्धति को आकार दिया। सत्याग्रह केवल विरोध करने का नाम नहीं था, उसमें सत्य के प्रति आग्रह था, लेकिन साथ ही यह विश्वास भी था कि अन्याय का विरोध करते हुए इंसान को अपनी मानवता नहीं खोनी चाहिए। आज जब हम सत्याग्रह शब्द सुनते हैं तो शायद हमारे सामने आंदोलनों की तस्वीर आती है, लेकिन अगर हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में समझे तो इसकी गहराई और भी स्पष्ट दिखाई देती है। मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बात लिखता है, आप गुस्से में जवाब देते हैं, वह और कठोर भाषा इस्तेमाल करता है, आप उससे भी ज्यादा कठोर शब्द लिखते हैं और देखते ही देखते एक छोटी सी बात दो लोगों के अहंकार की लड़ाई बन जाती है। अब सवाल यह है कि आपकी प्रतिक्रिया ने समस्या हल की या केवल आपके गुस्से को बाहर निकाला। गांधी जी के विचार हमें अपने व्यवहार पर यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या हमारा तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा उद्देश्य। अगर हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारी भाषा हिंसक है, अगर हम ईमानदारी की बात करते हैं लेकिन अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हैं, अगर हम सम्मान की मांग करते हैं
लेकिन दूसरों का अपमान करते हैं, तो हमारे विचार और हमारे व्यवहार के बीच में एक दूरी पैदा हो जाती है। गांधी जी का जीवन इस दूरी को कम करने का प्रयास था। उन्होंने अपने विचारों को अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश की, और यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व को केवल उनके भाषणों से नहीं बल्कि उनके जीवन से समझना जरूरी है। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा देश था जिसकी समस्याएं केवल किताबों में नहीं थी, भारत के गांव थे, किसान थे, मजदूर थे, गरीबी थी, सामाजिक भेदभाव था, अशिक्षा थी और औपनिवेशिक शासन की जटिल व्यवस्था थी। गांधी जी ने भारत को समझने के लिए लोगों के बीच जाने का रास्ता चुना। चंपारण, खेड़ा और अन्य आंदोलनों में उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझा और उनके साथ खड़े हुए। यहाँ गांधी जी के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष दिखाई देता है। नेतृत्व केवल बोलना नहीं है, नेतृत्व का पहला कदम सुनना है, किसी भी समस्याओं को वास्तव में समझना है। आज हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, लेकिन हम खुद कितनी बार दूसरे व्यक्ति को बिना बीच में रोके सुनते हैं। परिवार में, कॉलेज में, वर्कप्लेस में, समाज में और मित्रता में बहुत सारे विवाद इसलिए नहीं होते कि लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करता। गांधी जी की सार्वजनिक यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि परिवर्तन केवल बड़े भाषणों से नहीं आता, कई बार वह एक साधारण व्यक्ति की बात ध्यान से सुनने से शुरू होता है। फिर आता है 1930 का वह दौर जिसने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च। नमक एक ऐसी चीज जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कभी विशेष महत्व देते हैं, लेकिन गांधी जी ने उसी नमक को औपनिवेशिक कानून के खिलाफ जन आंदोलन का प्रतीक बना दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ दांडी की ओर निकले और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक संदेश था कि परिवर्तन के लिए हमेशा बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी एक छोटी सी चीज़ भी पूरे समाज को जोड़ने का माध्यम बन सकती है। आज हम अपने जीवन में अक्सर सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरा एक निर्णय क्या बदल देगा, मेरी एक आवाज़ का क्या महत्व है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि बड़े परिवर्तन कई बार छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। एक व्यक्ति गलत काम करने से मना करता है, एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करने से मना करता है, एक कर्मचारी गलत जानकारी देने से मना करता है, एक नागरिक सड़क पर कचरा नहीं फेंकता, एक युवा किसी अफवाह को बिना जांचे आगे नहीं बढ़ाता, ये सभी बहुत छोटे छोटे निर्णय लग सकते हैं, लेकिन समाज छोटे छोटे निर्णयों से ही बनता है। गांधी जी के जीवन की एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने केवल दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपने ऊपर भी प्रयोग किए। उनका जीवन आत्म अनुशासन, आत्म परीक्षण और आत्म संयम से जुड़ा रहा। आज की दुनिया में हम अक्सर बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त बदलें, हमारा परिवार बदले, हमारे शिक्षक बदले, हमारी व्यवस्था बदले, हमारा समाज बदले, दूसरे लोग से ज़्यादा ईमानदार बने, लेकिन हम कितनी बार खुद से पूछते हैं कि मुझे क्या बदलना चाहिए। गांधी जी के विचार हमें इस प्रश्न की ओर ले जाते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सम्मान दें तो क्या मैं दूसरों का सम्मान करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे सच बोले तो क्या मैं खुद सच बोलता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि समाज में हिंसा कम हो तो क्या मेरी भाषा दूसरों के प्रति सम्मानपूर्ण है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा देश बेहतर बने तो क्या मैं अपने छोटे से दायरे में अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा हूँ। यह प्रश्न असहज हो सकते हैं साथियों, लेकिन शायद इसी असहजता से आत्मचिंतन शुरू होता है। आज के युवा के सामने एक अलग प्रकार की चुनौती है। गांधी जी के समय में कम्युनिकेशन के साधन सीमित थे, आज हमारे पास पूरी दुनिया हमारी जेब में है। एक स्मार्टफोन हमें कुछ सेकंड में लाखों लोगों से जोड़ सकता है, ज्ञान तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान है।
शिक्षा, कोर्स, बुक्स, लेक्चर्स, रिसर्च, कम्युनिकेशन और कैरियर के अवसरों का विस्तार हुआ है, लेकिन इसी के साथ डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ा है। हमारा ध्यान लगातार बदलता रहता है, एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक शॉर्ट वीडियो, एक कमेंट, और हमारा ध्यान उस काम से हट जाता है जिसे हम करना चाहते थे। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन बहुत कम चीज़ों पर गहराई से काम करते हैं। गांधी जी का जीवन हमें एकाग्रता की शक्ति के बारे में सोचने का अवसर देता है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ मूल्यों को चुना और लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहे। आज के युवा के लिए शायद सबसे जरूरी बात यह है कि वह अपनी दिशा तय करे। हर ट्रेंड का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर नोटिफिकेशन का जवाब देना जरूरी नहीं है। आपको तय करना है कि आप अपने जीवन में किस दिशा में जाना चाहते हैं और फिर रोज थोड़ा थोड़ा उस दिशा में आगे बढ़ते जाना है। सत्य गांधी जी के जीवन का केंद्रीय विचार था, लेकिन सत्य केवल बोलने की चीज नहीं है, सत्य को जीना पड़ता है। सच बोलना तब आसान होता है जब सच बोलने से हमें कोई नुकसान न हो। असली परीक्षा तब होती है जब सच बोलने की कीमत चुकानी पड़े। एक विद्यार्थी के लिए सत्य का अर्थ हो सकता है यह स्वीकार करना कि उसे किसी विषय की जानकारी नहीं है। एक प्रोफेशनल के लिए सत्य का अर्थ हो सकता है अपनी गलती स्वीकार करना। एक व्यापारी के लिए इसका अर्थ हो सकता है ग्राहक को गलत जानकारी न देना। एक दोस्त के लिए इसका अर्थ हो सकता है सामने वाले से ईमानदारी से बात करना। और अपने लिए सत्य का अर्थ है अपनी कमजोरियों को पहचानना। कई बार सबसे कठिन सत्य वह होता है जो हमें अपने बारे में स्वीकार करना पड़ता है। हम दूसरों की गलतियां आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियों को स्वीकार करना कठिन होता है। गांधी जी का जीवन हमें आत्म परीक्षण की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। अहिंसा को भी आज के समय में नए तरीके से समझने की आवश्यकता है। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा न करना नहीं है, हमारा और हमारी भाषा भी चोट पहुंचा सकती है। एक कमेंट, एक मजाक, एक अफवाह, किसी की कमजोरी का सार्वजनिक मजाक, किसी समुदाय के बारे में अपमानजनक बात, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बिना प्रमाण नुकसान पहुंचाना, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनका अक्सर वास्तविक जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन आज के समय में अहिंसा का अर्थ यह भी हो सकता है कि हम असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रखें। हम किसी व्यक्ति के विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसे इंसान के रूप में सम्मान दे सकते हैं। लोकतंत्र और सभ्य समाज के लिए यह क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। असहमति दुश्मनी नहीं है, अलग विचार होना गलत होना नहीं है। किसी व्यक्ति को समझने के लिए जरूरी नहीं कि हम उससे सहमत ही हो। हमें केवल इतना सीखना है कि हम असहमति को नफरत में बदलने से रोकें। आज हमारे समाज में अलग अलग विचार, धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, जीवन शैली और राजनीतिक मत हैं। विविधता भारत की वास्तविकता है। समस्याएं अलग होने में नहीं है, समस्याएं तब शुरू होती है जब हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति हमसे अलग है वो हमारा दुश्मन है। गांधी जी के जीवन के अंतिम वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा के बीच शांति स्थापित करने के उनके प्रयास इस बात की याद दिलाते हैं कि शांति की सबसे अधिक जरूरत उसी समय होती है जब समाज में अशांति हो। जब सब शांत हो तब शांति की बात करना आसान है, लेकिन जब लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो तब संवाद और शांति के लिए बड़ा और खड़ा होना कठिन है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ऐसे ही कठिन समय का सामना किया और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए प्रयास किए। आज हमें एक और तरह की स्वच्छता की जरूरत है और वह है सूचना की स्वच्छता। गांधी जी के समय में समाचार पत्र और पत्रिकाएं विचारों को समाज तक पहुंचाने के प्रमुख माध्यम थे। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति की बात कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। यह एक बड़ी शक्ति है, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले हमें पूछना चाहिए, क्या यह सच है? इसका स्रोत क्या है? क्या इसे किसी विश्वसनीय स्थान से वेरीफाई किया गया है? इसका स्रोत क्या है? क्या इसे विश्वसनीय स्थान से वेरीफाई किया गया है?
क्या यह किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर सकता है? क्या मैं बिना जांचे इसे आगे बढ़ाकर किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूं? गांधी जी की सादगी की चर्चा भी अक्सर होती है, लेकिन सादगी का अर्थ विकास या सुविधाओं का विरोध करना नहीं है। सादगी का एक अर्थ यह है कि हम अपनी जरूरत और इच्छा के बीच के अंतर को समझें। आज हमारे सामने हर दिन नई चीज़ें आती है, नया फ़ोन, नया गैजेट, नया फैशन, नया ट्रेंड, नया लाइफस्टाइल। हमें हमेशा यह संदेश मिलता रहता है कि अगली चीज़ खरीदने के बाद हम और भी ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी चीज़ें हमारे नियंत्रण में है या हम चीज़ों के नियंत्रण में है। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को चला रही है? पैसा ज़रूरी है, लेकिन क्या पैसा ही हमारी पहचान बन गया है? आराम जरूरी है, लेकिन क्या आराम ने हमारी मेहनत करने की क्षमता कम कर दी है? गांधी जी का जीवन हमें कम से कम उपकरणों में जीने की क्षमता के बारे में सोचने का अवसर देता है। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उनकी तरह जीवन जिए, जरूरी यह है कि हम अपने जीवन में यह पहचान सके कि हमें वास्तव में क्या चाहिए और क्या केवल हमारी इच्छा है। स्वास्थ्य के संदर्भ में भी गांधी जी के विचारों को समझा जा सकता है। आज हमारे पास आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, दवाएं, डायग्नोसिस और टेक्नोलॉजी है, इसके बावजूद लाइफस्टाइल रिलेटेड समस्याएं बढ़ रही है। नींद की कमी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनियमित भोजन, लगातार स्क्रीन टाइम, तनाव और मानसिक थकान जैसी समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी न होना नहीं है, स्वास्थ्य का अर्थ है अपने शरीर और मन की जिम्मेदारी लेना, कभी फ़ोन को किनारे रखकर अपने परिवार के साथ बैठना, कभी प्रकृति में समय बिताना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित शारीरिक गतिविधियां करना और समय समय पर अपने मन की स्थिति को समझना भी जीवन का हिस्सा होना चाहिए। सेवा गांधी जी के जीवन और विचारों का एक महत्वपूर्ण पक्ष थी, लेकिन सेवा हमेशा किसी बहुत बड़े काम का नाम नहीं है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भी सेवा है, लेकिन किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना भी सेवा है, किसी बच्चे को पढ़ाना सेवा है, किसी परेशान मित्र के साथ बैठकर उसको समझाना भी सेवा है, किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना भी सेवा है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सम्मान से व्यवहार करना जिसे समाज अक्सर नज़रअंदाज करता है, वो भी सेवा है। सेवा का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें सामने वाले को एहसान महसूस न हो बल्कि सम्मान महसूस हो। समाज तभी मजबूत होता है जब लोग केवल यह नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि कभी कभी यह भी पूछें कि मैं क्या दे सकता हूँ। अब मैं विशेष रूप से युवाओं से कुछ कहना चाहता हूँ। साथियों, आज हमारे पास अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। हर दिन हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे आगे निकल रहे हैं। किसी का रिजल्ट आता है, किसी का करियर अच्छा है, किसी के पास पैसा है तो किसी के पास फॉलोवर्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया हमें किसी भी और किसी की भी पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाता। यह केवल चुने हुए क्षण दिखाता है। हम दूसरे व्यक्ति की उपलब्धि देखते हैं, उसकी रातों की मेहनत नहीं देखते। हम उसका रिजल्ट देखते हैं, उसके फेलियर को नहीं देखते। हम उसकी सक्सेस को देखते हैं, उसकी कंटिन्यूटी को नहीं देखते। इसलिए अगर आज कोई युवा अपने जीवन को लेकर परेशान है, अगर उसे लगता है कि वह पीछे रह गया है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि जीवन कोई रेस नहीं है दोस्तों, जिसमें हर व्यक्ति एक ही समय पर फिनिश लाइन पर पहुंचना चाहिए। आपकी यात्रा आपकी है, आपका संघर्ष आपका है, आपकी गति आपकी है। जरूरी यह है कि आप रुके नहीं, अपने अनुभवों से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। गांधी जी का जीवन हमें यह भी बताता है कि देश केवल सरकार या संस्थाओं से नहीं बनता, देश हमसे बनता है। हमारी ईमानदारी से बनता है, हमारे काम से बनता है, हमारे व्यवहार से बनता है, हमारी नागरिक जिम्मेदारी से बनता है, हमारे आसपास के लोगों के प्रति हमारे रवैये से बनता है। जब हम सड़क पर नियमों का पालन करते हैं, तब हम सार्वजनिक स्थान को साफ देखते हैं। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तब हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। जब हम किसी अफवाह को फैलाने से पहले सोचते हैं, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करते हैं, तब हम भी अपने तरीके से देश को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। यह स्वतंत्रता
आंदोलन के निर्णायक चरण का शक्तिशाली संदेश था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस पूरे दौर को समझते हुए हमें यह याद

रखना चाहिए कि गांधी जी का राजनीतिक संघर्ष अहिंसक जनभागीदारी के सिद्धांत से जुड़ा था। उनके लिए स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, वे चाहते थे कि लोगों में आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और सामाजिक चेतना विकसित हो। यही कारण है कि उनके विचारों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और नैतिक पुनर्निर्माण की बात भी समाज को दिखाई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन गांधी जी के लिए संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव था। जिस समय देश के कई लोग स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे थे, गांधी जी हिंसा से प्रभावित लोगों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास में लगे थे। यह उनके जीवन का एक गहरा पहलू है। सत्ता के केंद्र में होना ही नेतृत्व नहीं होता, कभी कभी नेतृत्व वहाँ जाना होता है जहाँ सबसे ज्यादा दर्द हो। जब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो, तब शांति की बात करना आसान नहीं होता। जब समाज विभाजित हो रहा हो, तब लोगों को जोड़ने की कोशिश करना आसान नहीं होता। साथियों, लेकिन यह वही समय होता है जब किसी व्यक्ति के मूल्यों की वास्तविक परीक्षा होती है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचारों पर चर्चा समाप्त नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके लेखन, भाषण, पत्र और जीवन पर दुनिया भर में अध्ययन होता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। उनके विचारों से सहमत होने वाले लोग भी हैं और उनके अलग अलग विचारों की आलोचना करने वाले लोग भी हैं। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को समझने का परिपक्व तरीका यही है कि हम उसे केवल पूजा की वस्तु न बना दें और न ही केवल आलोचना तक सीमित कर दें। हमें उनके समय को समझना चाहिए, उनके मूल लेखन को पढ़ना चाहिए, उनके निर्णयों के संदर्भ को देखना चाहिए और फिर विचार करना चाहिए कि आज उनके विचार से कौन से प्रश्न हमारे लिए प्रासंगिक है। इतिहास का उद्देश्य केवल महान लोगों की सूची बनाना ही नहीं, इतिहास हमें अपने वर्तमान को समझने का अवसर भी देता है। युवा साथियों, आपके पास आज वह शक्ति है जिसकी कल्पना गांधी जी के समय में करना भी कठिन था। आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, दुनिया से जुड़ने की क्षमता है, ज्ञान तक पहुंच है। आप कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। टेक्नोलॉजी आपको पावरफुल बना सकती है, लेकिन आपका कैरेक्टर तय करेगा कि आप उस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसलिए केवल सफल बनने की कोशिश मत कीजिए, विश्वसनीय बनने की कोशिश कीजिए। केवल बड़ा करियर बनाने की कोशिश मत कीजिए, अपना कैरेक्टर अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। केवल पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिए, अपनी उपयोगिता बढ़ाने की कोशिश कीजिए। गांधी जी को समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि हम पूछें कि गांधी जी ने क्या कहा था, बल्कि ये पूछें कि गांधी जी के विचार से मैं आज क्या कर सकता हूँ। सत्य को जी सकता हूँ, अहिंसा को अपनी भाषा में ला सकता हूँ, सेवा को अपने व्यवहार में ला सकता हूँ, सादगी को अपने जीवन में जगह दे सकता हूँ। गांधी जी की कहानी शायद इसलिए आज भी हमारे सामने खड़ी है क्योंकि वह हमें कोई आसान रास्ता नहीं देती। वह हमें यह नहीं कहती कि सत्य हमेशा आसान होगा। वह हमें यह नहीं कहती कि अहिंसा हमेशा सुविधाजनक होगी। वह हमें यह नहीं कहती कि ईमानदारी रखने पर हर बार तुरंत सफलता मिलेगी, लेकिन उनका जीवन हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि कठिन रास्तों के बावजूद हम किस तरह इंसान बनना और हम किस तरह एक सफल इंसान बन सकते हैं। मैं अंत में शायद गांधी जी को याद करने का सबसे सरल तरीका यही समझता हूँ कि हम कुछ प्रश्न अपने जीवन में अवश्य पूछें। क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूँ? क्या मेरे शब्दों से किसी को अनावश्यक चोट तो नहीं पहुँच रही? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहा हूँ? क्या मैं किसी दूसरे इंसान की गरिमा का सम्मान कर रहा हूँ? क्या मैं अपने देश और समाज को केवल शिकायत की नज़र से देखता हूँ या उसमें अपना योगदान देने की भावना भी समझता हूँ? तो आइए इस 2 अक्टूबर को हम गांधी जी को केवल अतीत के एक महान व्यक्तित्व के रूप में याद न करें, उन्हें वर्तमान के एक सवाल की तरह याद करें। एक ऐसा प्रश्न जो हमसे पूछता है कि अगर हमें बेहतर भारत चाहिए तो क्या हम खुद बेहतर नागरिक बनने के लिए तैयार है? अगर हमें एक शांत समाज चाहिए तो क्या हम अपनी भाषा में शांति ला सकते हैं? अगर हमें एक ईमानदार व्यवस्था चाहिए तो क्या हम अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी रख सकते हैं? सत्य का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह हमें अपने भीतर से मजबूत बना सकता है। सत्य का

0: रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह हमें अपने भीतर से मजबूत बना सकता है। तो इस 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद करते हुए एक बार अपने आप से पूछ लिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, और फिर उस उत्तर के अनुसार अपने जीवन में एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि शायद गांधी जी को याद करने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम उनके नाम को केवल अपने शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी जगा दें। इसी विचार के साथ आप सभी को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस सत्य को केवल बोले नहीं, उसे जीने की कोशिश करें। अहिंसा को केवल इतिहास में नहीं पढ़े, अपनी भाषा और व्यवहार में उतारें। सेवा को केवल भाषण में नहीं सुने, उसे अपने आसपास के जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि स्वतंत्रता को केवल एक उपलब्धि नहीं माने बल्कि एक जिम्मेदारी समझें, और अपने देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी केवल किसी और की न समझकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी को स्वीकार करें। क्योंकि आखिर में देश हमसे ही बनता है, समाज हमसे ही बनता है, और बदलाव भी हमसे ही शुरू होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आपके लिए वेणुधुनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। गांधी जयंती के अवसर पे एक विशेष प्रोग्राम था जिसमें हमने सुना भूपेंद्र शेरवी को, जो फाइनल ईयर BMS के स्टूडेंट है KLEBM के आयुर्वेदा महाविद्यालय के। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा, नंबर है 9019904904। ये है KLE वेणुधुनी 90.4 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु। आज 2 अक्टूबर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। सादगी, ईमानदारी, देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक शास्त्री जी ने देश को दिया एक प्रेरणादायी मंत्र, जय जवान जय किसान। आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम याद करेंगे उनके सरल जीवन, राष्ट्र के प्रति उनके योगदान और उनके प्रेरणादायी विचारों को। तो चले हम सुनते हैं डॉक्टर रोहित पांडे जी को, जो कि पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है केली बीएम के आयुर्वेदा महाविद्यालय के।
1: आदरणीय श्रोतागण, मैं डॉक्टर रोहित पांडे, पीजी प्रथम वर्ष का छात्र शाला के तंत्र से, आज मैं आप सभी को भारत के महान स्वतंत्र सेनानी, ईमानदार राजनेता, सादगी और देशभक्ति के प्रतिमूर्ति तथा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन और उनके महान योगदान पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेते ही हमारे मन में सादगी, सत्यनिष्ठा, त्याग, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना जाग उठती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि महान बनने के लिए धन, शक्ति और वैभव नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी और देश के प्रति अटूट समर्पण आवश्यक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। शास्त्री जी का बचपन आर्थिक कठिनाइयों के बीच बीता। कम उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में उनकी माता ने अत्यंत संघर्ष करते हुए उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही शास्त्री जी सरल, परिश्रमी और स्वाभिमानी थे। कठिनाइयों ने उन्हें कभी नहीं तोड़ा, बल्कि उन्हीं परिस्थितियों में उनके व्यक्तित्व को और सुदृढ़, संवेदनशील और मजबूत बनाया। उच्च शिक्षा के दौरान उन्हें काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की और से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। इसके बाद उन्होंने अपना नाम के साथ जाति सूचक उपनाम का प्रयोग करना छोड़ दिया। यह उनके समानता और मानवीय गरिमा में विश्वास को दर्शाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए चलाए गए आंदोलनों में उन्हें सक्रिय भाग लिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनके कदम कभी डगमगाए नहीं और उनका देश प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उनके लिए स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं थी, बल्कि ऐसे भारत का निर्माण भी था जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अवसर और न्याय प्राप्त हो। शास्त्री जी का जन्म गांधी जी के सत्य, अहिंसा और स्वदेशी के सिद्धांतों में गहराई से प्रेषित। उन्होंने इन सिद्धांतों को केवल अपनी भाषणों तक सीमित

नहीं रखा बल्कि अपने आचरण में भी उतारा। आज़ादी के बाद शास्त्री जी ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश में परिवहन और पुलिस विभाग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। बाद में वे केंद्र सरकार में भी अपने महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे भारत के रेल और परिवहन मंत्री भी बने। उनके कार्यकाल में 1956 में एक गंभीर रेल दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद पर इस्तीफा दे दिया। उनका यह निर्णय भारतीय सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही, नैतिकता और उत्तरदायित्व का एक अद्वितीय उदाहरण माना जाता। उन्होंने यह सिद्ध किया कि किसी पद पर बने रहना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में पद प्रभार संभाला। उनका कार्यकाल भले ही बहुत लंबा नहीं था लेकिन इस सीमित अवधि में उन्होंने देश के सभी सामने खड़े अनेक गंभीर चुनौतियों का साहस और सूझबूझ के साथ सामना किया। उस समय भारत खाद्यान्न की कमी, आर्थिक कठिनाई और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा था। ऐसे समय में शास्त्री जी ने अपने शांत, सरल और दृढ़ नेतृत्व से देशवासियों में विश्वास और आत्मबल जगाया। जय जवान, जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का सबसे प्रसिद्ध और अमर नारा था। जय जवान, जय किसान यह केवल एक नारा नहीं था बल्कि भारत की दो महान शक्तियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश था। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जवान और देश का पेट भरने वाले किसान। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय शास्त्री जी ने देशवासियों में आत्मविश्वास, साहस और राष्ट्रीय एकता की भावना ले आई। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा और देश की खाद्य समृद्धि दोनों ही समान रूप से आवश्यक हो। उन्होंने किसानों और सैनिकों के योगदान को समान महत्व दिया। यही कारण है कि जय जवान जय किसान आज भी भारतीय राष्ट्र जीवन का अत्यंत प्रेरणादायक लोकप्रिय उद्घोष है। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा था। उन्होंने देशवासियों से खाद्य अन्न की बचत करने और आवश्यकता पड़ने पर एक समय का भोजन छोड़ने जैसे स्वैच्छिक प्रयासों के लिए प्रेरित किया। उनके आह्वान पर अनेक लोगों ने अनुशासन और देश हित की भावना में ऐसा प्रयास किया। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और देश को खाद्य अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया। उनके कार्यकाल में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस दौरान आगे चलकर हरित क्रांति की नींव तैयार करने वाली नीतियां और संस्थागत प्रयासों को गति मिली। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। यह देश के लिए अत्यंत कठिन समय था लेकिन शास्त्री जी ने इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अद्भुत दृढ़ता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने भारत सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाया और देशवासियों से एकजुट होकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का आह्वान किया। अनेक नेतृत्व में भारत ने साहस और आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों का सामना किया। उस समय शास्त्री जी का शांत, संयमित और दृढ़ नेतृत्व पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए उद्देश्य से ताराचंद्र समझौता शास्त्री जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर किया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। दुर्भाग्य इसके अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। उनका निधन पूरे भारतीय राष्ट्र के लिए अत्यंत दुखद और अपूर्णीय क्षति थी। देश ने एक ऐसे महान नेता को खो दिया जिसने अपने छोटे से कार्यकाल में भी करोड़ों भारतीयों के हृदय में अमिट स्थान बना लिया था। बाद में उन्होंने मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व उनके महान गुणों का अद्भुत संगम था। वे सरल थे लेकिन कमजोर नहीं। वे विनम्र थे लेकिन दृढ़ निर्णय लेने में पूरी तरह समक्ष थे। वे सादगीपूर्ण जीवन जीते थे लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके संकल्प अत्यंत ऊंचे और अधिक थे। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि जनसेवा और राष्ट्र सेवा का पवित्र माध्यम भी हो सकता। प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व जीवन अत्यंत साधारण जीवन शैली बनाए रखी। उनकी सादगी दिखावे के लिए नहीं बल्कि उनके स्वभाव और जीवन मूल्यों का स्वाभाविक हिस्सा था। आज जब हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है तब शास्त्री जी का जीवन युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है। उनसे हम सीख सकते हैं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखना, देश हित

0: को व्यक्तित्व हित से ऊपर रखना, किसान और सैनिक के योगदान का सम्मान करना, सादगी और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाना, असफलता या कठिनाइयों के सामने हार न मानना, अपने कार्यों की जिम्मेदारियों ईमानदारी से स्वीकार करना। आज आवश्यकता केवल इतनी नहीं है कि हम शास्त्री जी को याद करें, आवश्यकता यह है कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। यदि हम अपने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी भारतीय इतिहास में ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची महानता पद और प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि चरित्र और कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा में होती है। आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और भारत की प्रगति में अपना योगदान देंगे। आइए शास्त्री जी के अमर मंत्र का केवल न अपने होठों पर नहीं बल्कि अपने हृदय और कर्मों में भी धारण करें। जय जवान, जय किसान, भारत माँ की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।
1: श्रोताओं, देश के महान नेता और सादगी की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित हमारा ये विशेष प्रोग्राम अब समाप्त होता है। शास्त्री जी का जीवन हमें सिखाता है कि महानता पद या शक्ति में नहीं बल्कि ईमानदारी, सादगी और राष्ट्र सेवा की भावना में होती है। आइए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लें। तो आज के एपिसोड में हमने डॉक्टर रोहित पांडे जी को सुना, जो पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है KLEBM के आयुर्वेदा महाविद्यालय के। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताएगा। नंबर है 9019904904। ये है KLEBM 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ट्यूनथोनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यूनिथोनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

टूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।